पिक करते हुए, बट ये 3 घंटे हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं ना। ये वही शो है जहां हम सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, हम पूरा जमाना रिवाइंड कर देते हैं। एंड ऑनेस्टली 90s को एक्सप्लेन करना कभी कभी बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉर मी 90s सिर्फ एक डेकेड नहीं था, एक फुल सेंसरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। ब्राइट कलर्स वाली शर्ट्स एंड ऑडियो कैसेट्स का रैक्स, VCR की ब्लिंकिंग लाइट, स्कूल बैग्स पे स्टिच्ड कार्टून के वो पैचेस एंड हर वो चीज का साउंड अलग से। मेमोरी का ऐसा लग रहा है कंपार्टमेंट 90s के लिए अलग से बना हुआ है और उसी में ये सारी की सारी चीजें स्टोर होके रखी हैं। और बार बार जब जब थर्सडे आता है तो फिर ये सारी मेमोरी सामने आने लगती है। टीवी ऑन होने का साउंड, प्रेशर कुकर की सीटी का साउंड, लैंडलाइन की घंटी का साउंड, साइकिल की घंटी का साउंड, नेबरहुड के वो क्रिकेट में गली में आउट चिल्लाने का साउंड। 90s एस्थेटिकली परफेक्ट हो ना हो पर इमोशनली काफी काफी परफेक्ट और फुल था। सब कुछ स्लाइटली एक्स्ट्रा ज्यादा, एक्स्ट्रा कलर, एक्स्ट्रा ड्रामा, एक्स्ट्रा मेलोडी। स्पेशली अगर हम बॉलीवुड की बात करें, हीरो का एंट्री मतलब हवा अच्छी सी चलनी चाहिए, शर्ट उड़नी चाहिए पीछे से। सैड सॉन्ग का मतलब फुल वायलिन का यू नो ऑर्केस्ट्रा। और रोमांटिक सॉन्ग्स में स्विट्जरलैंड ऐसा लगता था ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। पर उसी ओवर द टॉप दुनिया में रियल इमोशंस भी इतने सारे थे। कुमार सानू जी की आवाज कैसेट पे स्लाइटली ना हिस्सी करती थी, फिर भी यार डायरेक्टली दिल पे हिट करती थी। गोविंदा के नियॉन कलर के अतरंगी आउटफिट्स का लॉजिक हम लोग कभी भी फॉलो नहीं करते थे, फिर भी पूरा का पूरा देश उनको कॉपी करता था। ऑनेस्टली 90s में ट्रेंड्स सोशल मीडिया से नहीं, मूवीज से आते थे, चाहे वो हेयर कट्स हो, फ्रेंडशिप बैंड्स हो, बारिश वाले गाने हो, गॉगल्स हो, पोजेस हो, सब कुछ सिनेमा इंस्पायर्ड। इसीलिए ये मिक्स टेप सिर्फ नॉस्टैल्जिया का शो नहीं है, ये वो जगह है जहां एक स्पेल, एक साउंड, एक पुराना डायलॉग सडनली आपको स्कूल के कॉरिडोर, समर वेकेशन या संडे मूवी के सामने यूं ही खड़ा कर देता है। तो बस रेडी तो हम सब है ही, और फिर से खुल जाए 90s का हमारा वो वक्त। कांट वेट, स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: '90s में एंटरटेनमेंट का रैंडम स्क्रॉलिंग से कोई नाता रिश्ता ही नहीं था। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा यहाँ पर आपके साथ चल रहे मस्ती 90s मिक्स टेप। इस प्लानिंग का संडे वाली 90s में सबसे बड़ा औजार क्या था? न्यूज़पेपर का टीवी गाइड सेक्शन। क्या इम्पोर्टेंस होती थी बॉस उस छोटे से कॉलम की। पूरे हफ्ते के टीवी के स्केड्यूल जो है वहां पे उस एक कॉर्नर में उसको प्रिंट किया जाता था, राइट? याद आया कुछ आपको? फ्राइडे नाइट को या संडे मॉर्निंग को घर में कोई ना कोई न्यूज़पेपर खोल के तो चेक करता ही करता था कि अरे इस संडे हवा आपके है, कौन आने वाली है, और फिर निकलता है हमारा पेन या स्केच पेन, व्हाटएवर इज अवेलेबल आसपास में, एंड मूवी के आसपास फुल एक सर्कल बनाया जाता था, जैसे नेशनल इवेंट हम कैलेंडर पे मार्क कर रहे हो। 90s में मूवी देखना इंस्टेंट नहीं होता था, हमें वेट करना पड़ता था उसको देखने के लिए। आई थिंक इसीलिए उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा हम करते थे। एक्साइटमेंट भी काफ़ी, मतलब डबल ट्रिपल होती थी। पूरा वीक एंटिसिपेशन में चला जाता था कि भाई कितने बजे स्टार्ट होगी, उससे पहले यू नो प्लानिंग कर ली, सारे होमवर्क फिनिश कर लो। एंड संडे मूवी का जो टाइम है ना, उसका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अलग हुआ करता था 90s में। कर्टन्स जो है वो थोड़े से बंद कर दिए जाएंगे, स्नैक्स रेडी कर दिए जाएंगे, पूरा फैमिली टीवी के सामने एकदम बैठा होता था। इसमें कोई रिमोट फाइट नहीं होती थी क्योंकि ऑप्शन ही एक है, कहाँ से होगी। एंड द फनीएस्ट थिंग इज, मूवी स्टार्ट होने से पहले ही सब कोई सेटल हो जाते थे कि भाई जिसको जिसको वॉशरूम जाना है अभी जाके हो आओ। आज हमारे पास जैसे पॉज का बटन है, तब आई थिंक पेशेंस का बटन था हमारे पास। न्यूज़पेपर गाइड में सिर्फ मूवीज नहीं, आई थिंक कार्टून्स एंड क्रिकेट मैचेस, स्पेशल प्रोग्राम्स, ये सब हम केयरफुली ट्रैक कर सकते थे। कभी कभी तो स्कूल में ऐसे डिस्कशंस भी होते थे कि यार कल वाली मूवी देखी एंड अगर मिस हो गई तो फिर महीनों महीनों तक जो रिग्रेट, या क्योंकि रिपीट कब आएगा किसी को नहीं पता, राइट? सो शायद इसीलिए 90s का एंटरटेनमेंट ना इतना मेमोरेबल लगता है क्योंकि उसमें अबंडेंस नहीं थी, काफी सारी वैल्यू थी। एंड ऑनेस्टली न्यूज़पेपर में मूवी सर्कल करने का जो सेटिस्फैक्शन आता था ना, इट्स लाइक एक्ट टू वॉच लिस्ट, या जो हम अब यूट्यूब पे करते हैं, बट उसमें वो सेटिस्फैक्शन, वो मजा नहीं आते, मतलब क्योंकि उसकी लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी होती थी। इधर तो मतलब इंतजार, 90s के वो अमेजिंग थे जब इंतजार में भी मीठा मीठा नशा था मेरे दोस्त, गाने सुनते हैं, है ना। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप।

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: आपको वो स्पार्कल जेल पेंस याद है? क्या मतलब ट्रेंड किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 90s में कि अब तो हेडिंग हम इसी से लिखेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रब के साथ हमारा सभी का फेवरेट शो चल रहा है। जो ट्यून इन कर रखे उनको तो पता ही है, ये है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं अंतरा यहाँ पर आपके साथ। एंड भाई जेल पेन, यस, एकदम स्पेशल चीजें हुआ करती थी 90s के स्टेशनरी बॉक्सेस में। ये भी एक कैटेगरी हुआ करती थी कि ये नॉर्मल यूज के लिए है और ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन में यूज करने के लिए है। और इस स्पेशल कैटेगरी का सुपरस्टार होता था वो फैंसी सा जेल पेन, मेटालिक इंक वाले और वो चमकी चमकी ग्लिटर वाले, वो फ्रूटी स्मेल वाले। आई कैन जस्ट, मैं फीलिंग ही आ गई बात करते करते। क्या रॉयल ट्रीटमेंट मिलता था ना उन्हें, एवरी डे क्लास वर्क के लिए इसको यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के वो हेडिंग्स के लिए है। मतलब पूरा नोटबुक ब्लू पेन से भरो पर टाइटल गोल्डन जेल पेन से। डू यू रिमेम्बर दैट गोल्डन एंड सिल्वर कलर का जेल पेन? क्या मस्त, इतना ज्यादा फेमस हुआ था ये 90s के टाइम पे। एंड उसमें हेडिंग लिखते वक्त भी फुल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हम असली सोना ही यूज कर रहे हो। इट यूज टू बी लाइक दैट बिकॉज दोज पेन्स वर अ लिटिल एक्सपेंसिव दैन द यूजुअल वंस, राइट? स्लो मोशन में राइटिंग चल रही है ताकि इंक जो है वो स्मूद आए। और वैसे भी इफ यू रिमेम्बर, उनकी स्मूदनेस एक अलग ही लेवल पे आती थी, है ना? कभी बबल लेटर्स बना दिए, कभी शेडो इफेक्ट दे दिया, कभी अंडरलाइन पे एक्स्ट्रा ग्लिटर मार दिया। 90s में स्पेशल चीजें इंस्टेंटली यूज नहीं किया करते थे हम, संभाल के रखते थे और उसको फिर यूज किया करते थे, चाहे वो फैंसी इरेजर हो, नए स्टिकर्स हो, परफ्यूम वाले इरेजर या पेंसिल्स हो, एंड या फिर जेल पेन्स हो, सब गुड नोटबुक्स के लिए रिजर्व्ड। एंड द फनीएस्ट थिंग, कभी कभी जेल पेन इतना ज्यादा हम लोग प्रोटेक्ट करने लगते थे कि इंक खत्म होने से पहले ही पेन मिसिंग। स्कूल में एक्सचेंज सिस्टम भी हुआ करता था, एक बार यूज करने देना है प्लीज, एक बार। और नेचुरली सबको ग्लिटरिंग यू नो ट्राई करना होता था। आज की स्टेशनरी में मोस्टली काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तब की स्टेशनरी की चीज़ों में आई थिंक काफ़ी पर्सनालिटी होती थी। पेंसिल बॉक्स का जो है खोलते ही पता चल जाता था कि भाई बंदा आर्टिस्टिक है, स्पोर्टी है या फिर फुल ऑन फिल्मी है। ऑनेस्टली 90s के नोटबुक्स भी स्लाइटली यू नो थोड़े से अगर देखा जाए ड्रामेटिक होते थे। सिंपल नोट्स भी कलरफुल हेडिंग्स की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने लगते थे। मैं उन स्टूडेंट्स में से बिल्कुल भी नहीं थी, मैं ये सारे कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के फाइल्स में किया करती थी, लेट मी you that, but I know of my friends and students who used to do that, and their unki copies mang ke hum homework karne jaate the na, to yaar kya kamaal hi lag rahi hai, dekhne mein to bahut hi achhi lag rahi hai. Yeah, gel pens, I tell you, kya hi yaad aa gaya, aur kya hi kuch nahi mujhe yaad aa jata hai jab main ye show karti hu, but I love each and every bit of it. Radio Masti 24/7 live par aap rahiye mere sath, kahin na jaye, kyunki hamari ye 90s wali masti ab to aur chalegi.

0: my heart.
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: 40% off, 40% joy alukas,
5: 40% off, oh my god, let's go.
6: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
7: Soon, soon, baba, soon, baba, soon, soon, soon.
6: Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

कभी कभी सोचती हूँ 90s का जो बॉलीवुड का रोमांस था वो रियलिस्टिक कम और फ्लोई ज्यादा था. आई टेल यू व्हाई. मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं हूँ आंत्रा, यहाँ पर 90s वाली आंत्रा आपके साथ. इस फ्लो का जो बिगेस्ट सुपरस्टार आप बताओ कौन था? हीरोइन का दुपट्टा. क्या लेजेंडरी दुपट्टे होते थे यार, इतने लंबे, ओके, इतने ड्रामेटिक कि कभी कभी लगता था कि उनके लिए अलग से लगेज अलाउंस बिल्कुल जारी कर देना चाहिए. माउंटेन पे हीरोइन खड़ी है और दुपट्टा हवा में, ऑफिशियली इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी रहा होता था. कभी हीरो के फेस पे आ रहा है, कभी पेड़ से जाके अटक जा रहा है, कभी स्लो मोशन पे पूरा आपने आसमान ही कवर कर डाला है. ऑनेस्टली 90s रोमांस का हाफ इमोशन बॉलीवुड पे दुपट्टा ही क्रिएट किया करता था. इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट, 90s के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स ना इंटेंशनली, लेट मी टेल यू लिटिल बिट ऑफ अंदर की बात है ना, 90s के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स ना इंटेंशनली एक्स्ट्रा लॉन्ग दुपट्टास डिजाइन करते थे, ठीक है, बिकॉज सॉन्ग्स के लिए, उनके इफेक्ट के लिए वो चाहिए होता था. डायरेक्टर्स को फैब्रिक मूवमेंट, स्क्रीन पे रोमांटिक टेक्सचर जो है वो लगता था और उसकी डिमांड उन लोगों को, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को ऑलरेडी पता होती थी कि ये तो लगना ही लगना है. मतलब जितना ज्यादा हवा में उड़ता फैब्रिक उतना ज्यादा सिनेमैटिक फील. और इसलिए सॉन्ग्स में जायंट विंड मशीन्स भी यूज होते थे, इनडोर सेट हो या आउटडोर दुपट्टा को ड्रामेटिक बिहेव कराना है. रियल लाइफ में कोई इतना जायंट दुपट्टा वैसे तो मतलब बड़ा ही ड्रीमी सा लगता है, पर स्क्रीन पे इट लुक्स लाइक प्योर एलिगेंस. स्पेशली 90s की हीरोइन माधुरी, जूही, रवीना, करिश्मा कपूर, सबके सॉन्ग्स में दुपट्टा जो है ऑलमोस्ट सपोर्टिंग एक्टर होता था. कभी रोमांस क्रिएट कर रहा है, कभी कंफ्यूजन, कभी फुल कोरियोग्राफी, एंड कलर्स भी ब्राइट येलो, डीप रेड, नियॉन ग्रीन. 90s में सटल होना वॉज नॉट अ थिंग, इट वॉज लाइक आउट एंड लाउड. आजकल की स्टाइलिंग बहुत एस्थेटिक है, स्लीक है, तब स्टाइलिंग काफी जो है इमोशनल थी. फैब्रिक भी अपनी अलग एक्टिंग करता था. इसीलिए 90s के सॉन्ग्स ना, उसके वीडियोस इसीलिए इतनी ज्यादा ड्रीमी लगते थे. उनमें लॉजिक कम था, विजुअल इमोशन ज्यादा था. रेडियो वस्ती 24/7 लाइव पर यूं ही हमारी 90s वाली बातें चलती रहेंगी. आप बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो वस्ती 24/7 लाइव.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कसल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: मेमोरीज की भी खुशबू होती है एंड 90s की मेमोरी तो डेफिनेटली होती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s की मेमोरीज सिर्फ विजुअल्स या गानों के लिए नहीं होती है यार, ये खुशबुओं के लिए भी होती है। एक बहुत ही स्पेसिफिक सी 90s के स्मेल के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। नए नए किताबें नहीं, नए नए वीडियो कैसेट के कवर का प्लास्टिक। आई नो आई एम बींग वेरी वेरी स्पेसिफिक बट इट इज सो वेरी 90s। सो वीडियो लाइब्रेरी से कैसेट रेंट पे जब आप लाते थे उस टाइम पर, या नई VCR कैसेट जब घर आती थी, ऑटोमेटिकली उसका कवर ओपन करके उसका वो जो फर्स्ट स्मेल था, किसी ने ऑफिशियली सिखाया नहीं था पर ऑलमोस्ट सभी कोई करते थे, वो स्लाइटली वार्म सी प्लास्टिक की स्मेल मिक्स्ड विद दैट मैग्नेटिक टेप की वियर्ड सी खुशबू, एंड यू नो इंस्टेंटली एक फील आती थी मूवी टाइम। 90s में एंटरटेनमेंट फिजिकल होता था। कैसेट हाथ में पकड़ो, कवर आर्ट देखो, अंदर का फोल्डेड लेबल पढ़ो, पूरा एक रिचुअल। आज क्लिक करो और मूवी प्ले हो जाती है, तब मूवी स्टार्ट होने से पहले ही एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाया करती थी। और कैसेट कवर्स भी कितने ड्रामेटिक होते थे, हीरो का जायंट सा चेहरा, एक्सप्लोजन वाला बैकग्राउंड, बोल्ड फॉन्ट्स, नीचे सुपर हिट लिखा हुआ होता था नहीं कभी एक्शन मूवी के डार्क ब्लैक कवर होते थे, कभी गोविंदा कॉमेडी के फुल यू नो ब्राइट कलर्स से बने हुए कवर्स होते थे। और वीडियो लाइब्रेरी का जो माहौल होता था, उफ, शेल्फ्स पे लाइंड अप कैसेट्स, प्लास्टिक कवर्स की वो मिक्स्ड सी स्मेल और भैया जी रेकमेंडिंग ये वाली ले जाओ, हाँ ये वाली आजकल बड़ी चल रही है, ये वाली नहीं है ये वाली ले जाओ घर के घर आकर कैसेट का बहुत ही केयरफुली VCR में डालना, वो मैकेनिकल खट सी एक वो जो साउंड आती थी, फिर ट्रैकिंग को एडजस्ट करो, पिक्चर को क्लियर करो और मूवी ऑफिशियली स्टार्ट करो। इसीलिए ही 90s की मेमोरीज इतनी अलाइव लगती है, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ देखते नहीं थे, फील भी करते थे। साउंड हो, टेक्सचर हो, स्मेल हो, सब मेमोरी का पार्ट था। ऑनेस्टली आज भी कहीं ऐसे ओल्ड VCR के कैसेट की प्लास्टिक की स्मेल आ जाए ना, तो ब्रेन अपना इंस्टेंटली बोलता है भाई मूवी टाइम, लेकिन नहीं मिलती ना, क्या करे। बट यहाँ पर डेफिनेटली इस शो पर 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ 90s की खुशबू लेकर चलते हुए जा रहे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: 40% off, 40% joy Alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: नाइन्टीज में कभी कोई चीज छुपा के रखनी होती थी तो आप कैसे रखा करते थे, बताओ बताओ, मुझे भी जानना है। अपने वाले तो मैं कितने ही बताते रहते हूँ यहाँ पर रेडियो बस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। भाई 90s के स्कूल के बच्चों के पास लॉकर्स अगर ना हो, पर एक चीज डेफिनेटली होती थी, सीक्रेट स्टोरेज सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द कंपस बॉक्स। ऑफिशियली उसमें स्केल, कंपस, इरेजर एंड बाकी सारी चीजें जो हम कभी नहीं यूज करते थे प्रोटेक्टर के अलावा, ये सारी तो चीजें होनी चाहिए है, वो तो होती थी, बट रियलिटी छोटे छोटे टाइनी टाइनी फोल्डेड नोट्स, आपके फेवरेट रैपर्स, क्रिकेट प्लेयर के स्टिकर्स, लकी वो कॉइन्स, वो इरेजर का छोटा छोटा पीस, और कभी कभी आपके फेवरेट स्टार की फोटो छोटी सी, मतलब स्टेशनरी कम पर्सनैलिटी ज्यादा, राइट। और हर कॉम्पस बॉक्स का वो हिडन एक सेक्शन होता था, अरे वही ना, ऊपर देखो है ना, ऊपर वो एकदम स्टेंसिल के जैसा सेक्शन होता था ना, उसको हटाओ तो नीचे तो ये सारे सामान ही मिलते थे ना, वो टाइनी से ट्रे के नीचे वाला स्पेस, अब याद आया आपको फाइनली, ओके, वही था ओरिजिनल सीक्रेट वॉल्ट। 90s के किड्स अपनी मिनी दुनिया जो ना साथ में लेकर चलने में मानते थे, इसीलिए किसी के पास सेंटेड इरेसर का कलेक्शन, किसी के पास WWF का स्टिकर, किसी के पास फ्रेंडशिप का कोई नोट, एंड क्लास बोरिंग हो तो क्वाइटली यू नो अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए कॉम्पस बॉक्स खोल लो। अपना ही हिडन ट्रेजर जो है देख देख के हम खुश हो जाया करते थे कि जैसे हम खुद ही के म्यूजियम के क्यूरेटर बन गए हो ऑल ऑफ अ सडन। एंड कॉम्पस बॉक्स जो है उसकी साउंड भी आपको याद है, मेटल का बॉक्स, टक से वो बंद होता था, कभी मैग्नेटिक वाला फैंसी बॉक्स, कभी वो टिन वाला डेंटेड वाला वर्जन, वो आई वॉज द ओनर ऑफ दोज डेंटेड वर्जन, क्योंकि एक ही ब्रांड के ना नॉर्मली एक आता था और वो ना सारे मिडिल क्लास फैमिलीज वही वाला सेम टू सेम, इसीलिए कई बार चीज़ें खुमघुम भी हो जाती थी, चोरी भी हो जाती थी क्लास से, ये नेचुरली जो है कंपैरिजन भी फुल ऑन होता था कि ओ तो नया ज्योमेट्री वर्क्स। आजकल बच्चे जो है क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं, तब इमोशनल स्टोरेज कॉम्पस बॉक्स में हमारे हुआ करता था। ऑनेस्टली उस छोटे से बॉक्स में सिर्फ ये सामान नहीं होते थे, फेवरेट थिंग्स एंड इनसाइड जोक्स एंड स्कूल के क्रश के रिमाइंडर्स एंड गुड लक चार्म्स, पूरा बचपन 90s का इन अ कंप्रेस्ड वर्जन। इसीलिए आज भी ओल्ड कंपस बॉक्स कभी अगर दिख जाए ना, उसके स्क्रैचेस देखते ही आधी से ज्यादा मेमोरी तो यूं ही ताजा हो जाती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, बाकी की मेमोरीज 90s वाली मैं यहां पर इस शो पे आके ताजा कर देती हूँ, बस वाजिब आई है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे ये 90s का सिलसिला तो बिल्कुल यूं ही चलता रहेगा।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 623-5840. Terms and conditions apply.
5: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
6: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
5: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
6: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। On Radio Masti 24/7 Live.
5: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath, gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi, sab kuch sirf masti hangout.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रंप के साथ, और यहाँ पर चल रहा है क्या मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s बॉलीवुड में आपने कभी ध्यान दिया है, विलन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बैक स्टोरी की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती थी। बस पार्टी का एक सीन दिखाया, उसमें एंट्री करा दो और उसको पहना दो फुल व्हाइट सूट। वैसा तो लॉजिक कहता है कि काला पहना दो, बट नहीं, विलन याद करो फुल व्हाइट सूट, अचानक से चमका ना, ओह माय गॉड, सही तो है ये बात। ऑडियंस समझ जाती थी कि बंदा में ये तो कुछ गड़बड़ है। अरे सीरियसली 90s के रिच विलन्स का ऑफिशियल ड्रेस कोड ही व्हाइट होता था, व्हाइट ब्लेजर, व्हाइट पैंट्स, व्हाइट शूज, कभी व्हाइट हैट भी, और साइड में होता था व्हिस्की का ग्लास, एकदम कंपल्सरी। अब हीरो की बात की जाए तो यूजुअली बड़ी सिंपल सी फ्लोरल सी शर्ट या फिर लेदर का जैकेट, एंड ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, 90s कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स इंटेंशनली विलन्स को विजुअली अलग दिखाने के लिए ब्राइट ऑल व्हाइट आउटफिट्स को यूज किया करते थे, स्पेशली पार्टी सीन्स में, क्योंकि लाइटिंग में व्हाइट इंस्टेंटली स्टैंड आउट करता था और उससे ऑडियंस को क्विकली ये समझ में आ जाता था कि इंपॉर्टेंट शेडी कैरेक्टर हैज एंटर्ड द सीन। मतलब फैशन भी और स्टोरी टेलिंग भी साथ साथ में, एंड विलन्स का एटीट्यूड भी फुल ऑन ड्रामेटिक, स्लो क्लैप, ईविल सी एक स्माइल, बैकग्राउंड में सैक्सोफोन या फिर वो सिंथ का म्यूजिक, एंड वो जायंट सी पार्टी के सेट्स, डिस्को लाइट्स, फेक शैंपेन, स्मोक मशीन, और सेंटर में विलन इन व्हाइट सूट। उफ, वो 90s सटल क्या होता है, आई डोंट थिंक सो, नथिंग वॉज सटल अबाउट 90s। पर ऑनेस्टली इसी ओवर द टॉप स्टाइलिंग की वजह से कैरेक्टर्स मेमोरेबल भी बन जाया करते थे। आज रियलिस्टिक फैशन है, तब सिनेमैटिक फैशन था, रियल लाइफ लॉजिक कम, स्क्रीन पे इम्पैक्ट ज्यादा। एंड द फनी थिंग इज कि कभी कभी हीरो भी व्हाइट सूट पहन लेता था, पर तब उसके साथ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग हुआ करता था, विलेन के साथ डेफिनेटली इलीगल जो है वो डीले चल रही होती थी। 90s बॉलीवुड इतना एंटरटेनिंग है आई टेल यू, उसमें कलर्स भी ऐसा लगता था कि एक्टिंग ही कर रहे हो, मुझसे तो तारीफ करा लो कितनी भी 90s की। रेडियो बस 24/7 लाइव पर फिलहाल के लिए तारीफ करो इन गानों की, एंड देन ऑफ कोर्स कम बैक।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाह जी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: ओ गॉड, पॉपिंस, यस पॉपिंस याद आ गया। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। भाई हर किसी का पॉपिंस के साथ अपना अपना सिस्टम होता था उसको खाने का। इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो इफ यू डोंट रिमेंबर, देन आप तो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा क्योंकि मैं बात ही उसी की करने वाली हूँ। 90s में बच्चों के लिए एक चीज बहुत ही सीरियसली ली जाती थी, पॉपिंस का कलर ऑर्डर। सच में पॉपिंस सिर्फ कैंडी नहीं थी, एक पर्सनालिटी टेस्ट के बराबर जो है हुआ करता था। किसी को ऑरेंज सबसे ज्यादा फेवरेट, किसी को ग्रीन, किसी को पिंक, और सबका एक फिक्स्ड ईटिंग पैटर्न होता था। वो क्या, तू येलो पहले खाता है या ऑरेंज वाला पहले खाता है? डिस्कशन भी उस पर ऐसे होती थी कि पता नहीं कौन से हम लोग पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं दुनिया चलाने के लिए। पॉकेट खोलते ही फर्स्ट काम क्या करना है, कलर्स करने हैं इंस्पेक्ट। फिर मेंटली डिसाइड करना है दैट कौन सा कलर पॉपिंस का लास्ट में बचाना है, लास्ट में सेवर करने के लिए, क्योंकि फेवरेट कलर का टेस्ट तो सबसे स्पेशल लगता है। 90s में चॉकलेट्स और कैंडीज क्विकली फिनिश नहीं होती थी, प्लान्ड होती थी। वन बाय वन उसको ईट करते जाओ, स्लोली स्लोली एंजॉय करो। और पॉपिंस के टाइनी राउंड वो जो कैंडीज का टेक्सचर, याद आ रहा है मुझे तो ऐसे सोच सोच के, थोड़ा हार्ड, थोड़ा स्वीट और फिंगर्स पे हल्का सा कलर का मार्क। एंड स्कूल में शेयरिंग का कल्चर तो पॉपिंस में सबसे ज्यादा इजी होता था, ऑरेंज वाला देना। पर नेचुरली फेवरेट कलर एक्सचेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, इट वाज इन 90s एंड आई थिंक टिल डेट। ऑरेंज पॉपिंस इज माय फेवरेट, माय। और फनी थिंग वाज दैट साइंटिफिकली टेस्ट ऑलमोस्ट सेम जो है हुआ करता था, पर ब्रेन कन्विंस था कि ग्रीन का अलग ही टेस्ट था, क्योंकि 90s में इमेजिनेशन भी काफी फ्लेवर ऐड करती थी। एंड दोस कलरफुल रैपर्स, ब्राइट रेड्स, येलोज, ग्रीन्स, पूरा 90s ही कलरफुल था यार, सीरियसली वाला। उसी के साथ साथ एक और वर्जन आया था, दैट वॉज रोला कोला। पता नहीं आप याद है, पॉपिंस जैसा था बट इसका फ्लेवर कोला वाला था। ओ माई गॉड, एंड इवन मोर देन पॉपिंस आई यूज टू लव रोला कोला। ये जो एक तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही पसंद थी, बट ये जो कैंडी फॉर्म में इन्होंने निकाल दी ना, ओहो, मजे ही आ गए उसको खाने में। आज भी गमीज वगैरह कभी खाने का मन होता है तो वो जो कोला फ्लेवर्ड वाले होते हैं ना, तो बड़े ही कमाल के लगते हैं। सडनली आई एम टॉकिंग अबाउट कैंडीज, एंड रिसेंट हमारे मोदी जी मेलोडी जी से मिले, एंड यू नो व्हाट अ 90s बैंटर दे हैड। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट वीडियो और नॉट। ओके, मोदी जी गिफ्टेड मेलोडी पैकेट ऑफ मेलोडी, या And, मेरे दिमाग में इंस्टेंटली उसको देख के लगा, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आई एम लाइक स्टॉप, ये बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेट इट बी लाइक दैट। आई थिंक हमें भी चलना चाहिए आगे। आपके दिमाग में नहीं चला? ओ माई गॉड, इट्स सो वेरी 90s।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtapes with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
2: Hello 9821026212 BPL. Arey 9820026235 Max Touch.

इतना सारा लोगों ने अपने पेरेंट्स का कभी ना कभी सिग्नेचर कॉपी किया है, नहीं किया है? I'm just asking. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं अंतरा आपके साथ, एंड यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप, 90s कूल लाइव का एक स्किल जो सीक्रेटली हर कोई ही डेवलप कर रहे होते हैं, पेरेंट्स का सिग्नेचर कॉपी करना। होमवर्क डायरी या टेस्ट पेपर पे जब रेड मार्क्स आते थे ना, तब सडनली क्रिएटिविटी और ये सारी बदमाशियां ना एक्टिवेट हो जाया करती थी कि देखो मम्मी को तो दिखाने पे चपेट ही चपेट पड़ेगी, बॉस कैसे बचा जाए। और फिर स्टार्ट होता था रफ नोटबुक पे सिग्नेचर का प्रैक्टिस सेशन। एक बार ट्राई, दो बार ट्राई, तीन बार ट्राई, कुछ तो कोई कहीं ना कहीं नहीं मैच नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंस का आप लेवल देखना चाहिए भाई, उस टाइम पे ऐसा हाई होता है। विजडम तो जीरो पे चल रहा है, नेगेटिव पे बोलो, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स इंस्टेंटली देख के जो है समझ जाया करते थे कि ये साइज वियर्ड है, स्पेलिंग थोड़ी सी शेकी है, कभी कभी ओवर राइटिंग में भी या फिर टू नीट हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो सी, आई एम नॉट सेइंग 90s के बच्चे जो है क्रिमिनल्स वगैरह थे, भाई पैनिक आर्टिस्ट का नाम देना चाहती हूँ मैं उनको, पैनिक आर्टिस्ट थे वो। बस उस मोमेंट पे लगता था कि यही सोल्यूशन है, और यार बच्चे बदमाशी करते हैं यार, ये छोटी छोटी चीज़ें। स्कूल डायरीज भी कितनी सीरियस यू नो चीज़ें होती थी, कि रिमार्क सेक्शन होता था, रेड इंक में जो है कॉमेंट्स आते थे कि आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, परसों वो नहीं हुआ। डायरी घर में ले जाना मतलब टेंशन से भरा हुआ, उफ क्या ही। एंड कुछ बच्चों के तो पेरेंट्स की रियल जो है सिग्नेचर ऑब्जर्व भी करते थे, कि जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो कि अच्छा पापा यहाँ पे कर्व बनाते हैं अपने सिग्नेचर पे। पर नेचुरली जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो क्योंकि हालत भी तो उतनी खराब है, वी वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी कुड नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हम नर्वस हैं, हमारी एंजाइटी लेवल अलग ही लेवल पे चल रही है कि भाई पता नहीं क्या होगा। एंड अगर कभी गलती से टीचर उसके बाद बोल दे, अगर तो आपने ये पुल ऑफ कर लिया, ठीक है आपने अपने पेरेंट के सिग्नेचर कॉपी कर लिया कि कल पेरेंट से मिलना है, भाई साहब गेम ओवर। ठीक है, आजकल डिजिटल पोर्टल्स है, ईमेल है, तब एक छोटा सा सिग्नेचर पूरा मूड डिसाइड करता था। ऑनेस्टली 90s स्कूल लाइफ की इनोसेंस अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही अलग लेवल की थी, गलतियाँ भी फिल्मी लेवल ड्रामेटिक होती थी, शायद इसीलिए आज वो फेक सिग्नेचर मेमोरीज में इतनी फनी लगती है, क्योंकि उसमें रिबेलियन कम और बचपना काफी ज्यादा हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें जो है ना कोई यूज नहीं करेगा, अगर तो कोई बच्चा सुन रहा है, कोई यूज नहीं करेगा, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, है ना, कोई नहीं करेगा।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
3: अगर तो आपने पिछले हफ्ते का एपिसोड सुना हो तो उस पर हम बात कर रहे थे कि साइकिल पे अलग अलग लेवल्स होते हैं कूलनेस शो ऑफ करने के लिए। आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप, मैं हूं अंतराब के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और वो कूलनेस का एक फ्लेक्स तो मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि भाई खड़े होकर साइकिल पे खड़े होकर चलाना वो अलग एक लेवल का स्वैग दिखाने का होता है। बट आज मैं एक और स्वैग वाली बात बताऊंगी ऑन द साइकिल। भाई 90s के बच्चों को ड्राइविंग स्कूल वो क्या होता है, साइकिल ही सब कुछ सिखा दिया करता था। और साइकिल में एक और लेजेंडरी फीचर था, रिवर्स पेडल ब्रेक। ठीक है, आज के किसी भी बच्चों को आप एक्सप्लेन करो ना ये बात, तो वो बड़े शौक से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही जो है बहुत ही मतलब कायदे से मैं नीचे देखती हूँ हमारे जो है कॉन्टो में बच्चों को, तो बड़े भी प्रॉपरली बिल्कुल चलाते हैं एवरी थिंग। बट हमने अपने अपने जो है ना खुद ही के इजाद कर रखे थे। क्या स्मूथ कॉन्फिडेंस होता था उसमें, फास्ट साइकिल आप चला रहे हो, ठीक है, अब सडनली ब्रेक चाहिए, बस क्या करना है पेडल रिवर्स करो या स्किड मार के रोकना, तो फुल हीरो वाला मोमेंट। बिकॉज 90s का सिनेमा ऑल्सो गिव अस अ लॉट ऑफ दिस, राइट, स्पेशली डस्टी रोड्स वगैरह पे। सो 90s में स्किल्स यूट्यूब से नहीं आती थी भाई, नेचुरली बहुत डेवलप की जाती थी। साइकिल का बैलेंस, वन हैंड राइटिंग, शार्प टर्न्स, डबल सीट मैनेजमेंट, सब प्रैक्टिस से आएगी। एंड रिवर्स पेडल ब्रेकिंग का टाइमिंग भी बहुत ही बड़ा एक आर्ट और एक स्किल सेट आपको बिल्कुल प्राप्त उस लेवल पे करना होता था। ज्यादा फोर्स लगा दिया तो टायर स्लाइड कर जाएगी, कम कर दिया तो दीवार से जाके भिड़ जाओगे ब्रो। पर बच्चे ऑटोमेटिकली इसको जो है लर्न कर लिया करते थे। एंड ऑनेस्टली साइकिल 90s साइकिल राइड्स का फ्रीडम लेवल ही डिफरेंट था। हेलमेट्स नहीं है, कोई फिटनेस ट्रैकिंग नहीं है, कोई साइकिलिंग गियर नहीं है, बस हवा भरानी है, स्पीड और कॉन्फिडेंस। साइकिल का साउंड भी मुझे अभी बात करते करते जो है मेरे कानों में ऐसा लग रहा है कोई ऐसे रिकॉर्ड सा चला दिया है। वो चेन की हल्की हल्की सी खटखट एंड वो बेल का ट्रिंग ट्रिंग एंड ब्रेक का वो स्क्रैची सा साउंड, पूरा का पूरा साउंड ट्रैक एंड कॉलोनी रेसर्स फुल ऑन सीरियस की उस गली के इस कोने से उस कोने तक। फिर ऑफ कोर्स दैट द स्टैंडिंग पेडल मोड वो तो मतलब था ही था। आजकल इतनी फैंसी बाइक्स है, उसमें अलग अलग गियर्स के लेवल्स है, तब सिंपल साइकिल्स थी पर कहानियां बहुत लिख दी हमने उस पे। इसीलिए 90s की साइकिल मेमोरीज इतनी अलाइव लगती है क्योंकि उनमें डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, राइड इंपॉर्टेंट होती थी। और आज जो है आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ देखते हैं। भाई सफर को इंजॉय करना भी तो बनता है ना। चलिए फिलहाल 90s वाला ये सफर हम इंजॉय यूं ही करते रहेंगे और रेडियो बस्ती 24/7 लाइव।

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: नाइन्टीज में हर चीज में एक छोटा सा छोटा अपना लॉजिक हुआ करता था। इवन की डिस्को लाइट्स अगर आपको दिखानी हो और फील कराना हो सिनेमा में, तो उसका भी अपना एक लॉजिक हुआ करता था। मैं बताती हूँ ना, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप, अंतरा 90s वाली आपके साथ यहाँ पर। एंड 90s बॉलीवुड का डिस्को लॉजिक बहुत ही सिंपल था, लाइट्स कम अगर आपको लग रही है तो शीशा लगा दो। सीरियसली 90s के डांस सॉन्ग्स में मिरर्स का ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल का हुआ करता था। वॉल पे मिरर्स, पिलर्स पे मिरर्स, डांस फ्लोर पे रिफ्लेक्शन, और कभी कभी तो हीरो के सनग्लासेस में भी एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन। पूरा सेट स्पार्कल मशीन जैसा लगता था, और जैसे ही डिस्को बीट स्टार्ट होती थी, लाइट्स फ्लैश, मिरर रिफ्लेक्शंस यूज्ड टू मल्टीप्लाई, एंड सडनली सेट ह्यूज और ग्लैमरस सा फील होने लगता था। एंड ये एक्चुअली एक बहुत ही क्लेवर फिल्म मेकिंग ट्रिक भी थी 90s के दौर में। 90s में VFX और डिजिटल लाइटिंग बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी, तो प्रोडक्शन डिजाइनर्स जो हैं मिरर हैवी सेट्स यूज करते थे ताकि लाइटिंग इफेक्ट्स कैमरा पे बिगड़ लगे। मतलब एक लाइट को मिरर्स मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, तो आपका अफोर्डेबल भी हो गया और ड्रामेटिक भी हो गया। और इसीलिए डिस्को सॉन्ग्स विजुअली आपको कभी भी देख लो तो बहुत ही ग्रैंड फील हुआ करते थे 90s के टाइम पे। स्पेशली गोविंदा का अगर कोई गाना हो या पार्टी ट्रैक्स हो विद डांसर्स एवरीवेयर, सो सिल्वर कॉस्ट्यूम से, शाइनी जैकेट से, स्मोक मशीन है, मिरर के रिफ्लेक्शंस है, फुल 90s विजुअल ओवरलोड। एंड डांस की कोरियोग्राफी भी मिरर्स के अकॉर्डिंग ही हुआ करती थी। स्पिन करो तो रिफ्लेक्शंस मल्टीप्लाई हो, हीरो की एंट्री तो मिरर के थ्रू रिवील की जाती थी। या ऑनेस्टली इसी एक्स्ट्रा ड्रामा की वजह से 90s के सॉन्ग्स डिस्को वाले अनफॉरगेटेबल भी लगते थे। आज क्लीन मिनिमलिस्ट सेट्स ट्रेंड में है, तब था जितना चमकेगा उतना ही चलेगा, वही एनर्जी थी। एंड ऑडियंस को भी वही पसंद था, क्योंकि 90s बॉलीवुड में रियलिज्म सेल नहीं करना होता था, स्पेक्टिकल सेल किया करता था। इसी बात पे जो है एकदम मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन किसी की ऐसी कोई पार्टी रख दे 90s डिस्को टाइप, मैं भी कोई ऐसा झकमक झकमक एकदम डिस्को टाइप। वैसे किया था हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने शाइन पार्टी की, तो उसमें भी मैंने एकदम, वो भी एकदम वाइब तो पूरी वैसी ही थी, एकदम झकमक झकमक। चलो एकदम झगमग करते हुए गाने आपकी तरफ 90s वाले ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: जी बस इसी स्माइल, स्पार्कल और थोड़ी सी फिल्मी हवा के साथ आज ही मस्ती 90s मिक्स टेप यही पॉज लेगा, रिवाइंड नहीं, सिर्फ पॉज मेरे दोस्तों। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा था और आज हमने फिर से वो 90s वाली दुनिया को फील किया, पूरे दिल, पूरी शिद्दत, पूरी आत्मा के साथ फील किया। जब तक ओवर ड्रामेटिक ना हो तो 90s लगता ही नहीं है। जहाँ टीवी के गाइड न्यूज़पेपर में सर्कल होता था, जेल पेन सिर्फ हेडिंग्स के लिए बचाए जाते थे, वीडियो कैसेट की प्लास्टिक स्मेल भी एक्साइटमेंट दिया करती थी, कॉम्पैक्स के बॉक्स का मिनी ट्रेजर चेस्ट एंड विलन्स का वो फुल व्हाइट सूट पहन के पार्टी में एंट्री मारना, पॉपिंस के कलर का ईटिंग ऑर्डर फिक्स होना, स्कूल की डायरी में फेक सिग्नेचर प्रैक्टिस एंड साइकिल का रिवर्स पेडल ब्रेक या वो भी डिस्को सॉन्ग्स में मिरर्स, अभी अभी बात कर रहे थे हम, इतना ज्यादा यूज किया जाता था कि लगता था पूरा सेट ही ग्लिटर खा के आया है। ऑनेस्टली 90s का मैजिक एग्जैक्टली यही था, हर चीज थोड़ी एक्स्ट्रा पर हर चीज बहुत सारी याद भी आज की डेट में। आज कन्वीनियंस ज्यादा है पर उस वक्त इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, मूवी देखना इवेंट हुआ करता था, सॉन्ग रिकॉर्ड करना मिशन हुआ करता था, स्टेशनरी इमोशन था हमारा एंड बॉलीवुड वाजी वाह। 90s सिनेमा रियलिज्म नहीं, ड्रीम्स बेचता था, ड्रीम्स, स्लो मोशन की हवा, जायंट वो दुपट्टे एंड ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, सब ओवर द टॉप हुआ करता था पर फुल दिल से था। इसीलिए 90s सिर्फ याद नहीं आता, फील होता है। एक स्मेल, एक कैसेट का साउंड, एक ओल्ड कैंडी का रैपर और इंस्टेंटली हम वापस वहीं चले जाते हैं जहां संडेज थोड़े से लंबे लगते थे एंड हैप्पीनेस काफी सारी सिंपल। थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्रैवलिंग थ्रू दिस कलरफुल लिटिल टाइम मशीन ऑफ 90s विद मी। और इसी बात के साथ मैं यहां से निकलती हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉयड द शो। टिल देन स्टे नॉस्टैल्जिक, स्टे फिल्मी और कभी कभी थोड़ा ग्लिटरी 90s हो जाए, हो जाए, हो जाए।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर कर रहा हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं कहता हूं मेरे सवाल के जवाब में आपको कहना चाहिए सारू छे, और मैं कहूंगा अखा सिंगापुर मारू छे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत। तो आज हमारा कारवां गुजरेगा 1980 के सुपरहिट साल से। सुपरहिट फिल्मों की हम बातें करेंगे, उनकी कहानियां सुनाएंगे, उनके गाने आप तक पहुंचाएंगे। सिंगापुर, ये वो साल था 1980 का जब CNN यानी केबल न्यूज नेटवर्क चैनल की शुरुआत हुई। यही वो साल था जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और भी बहुत कुछ हुआ इस साल। हिंदुस्तान में कई फिल्में बनी जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इन सारी फिल्मों के बीच में एक फिल्म आई थी जिसका नाम भी खूबसूरत था। ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, ऋषिकेश मुखर्जी और NN सिप्पी ने इसे प्रोड्यूस किया। फिल्म में रेखा लीड रोल में थी, खूबसूरत थी, साथ में उनके साथ थे राकेश रोशन, दीना पाठक और अशोक कुमार। हालांकि देखा जाए तो सभी लीड रोल में थे। ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है जैसे कि रशीदा की हर फिल्में होती हैं। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और रेखा ने अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। हालांकि उसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म जुदाई के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। कहानी मजेदार है जिसमें अशोक कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। दीना पाठक जो अशोक कुमार की पत्नी है, घर में उनकी ही चलती है। बहुत सारे कायदे कानून लगा रखे उन्होंने, यहाँ तक कि अशोक कुमार की भी नहीं चलती। अपने बेटों के लिए बीवियां भी दीना पाठक ही चुनती हैं। तो इनके बड़े बेटे की शादी होती है साहब डेविड की बेटी अंजू से। अंजू कौन है? मंजू की बहन। मंजू कौन है? रेखा। रेखा की बड़ी दीदी है अंजू। तो उनकी शादी इस घर में हो जाती है साहब, और दीदी के साथ कुछ दिन बिताने के लिए वो दीदी के ससुराल आ जाती है। यहाँ मंजू यानी रेखा का फ्रैंक बिहेवियर दीना पाठक यानी निर्मला को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी घर वाले उससे खुश रहते हैं। इसी बीच राकेश रोशन और रेखा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब निर्मला बाहर चली जाती है तो रेखा उनका मजाक बनाती, मतलब मिमिक्री करती है, लेकिन संयोगवश निर्मला वापस आ जाती है। लेकिन जैसा कि हर हिंदी फिल्म में होता हैप्पी एंडिंग, यहाँ भी वही होता है। गाने बेहद कमाल हैं जिनको कंपोज किया है पंचम दा ने। वो गाना याद है आपको? सुन सुन सुन दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। जब अंजू के लिए रिश्ता आता है दीना पाठक जी के घर से, तब मंजू ये गाना गाती है। और एक गाना जब वो अंजू के ससुराल चले जाती है, पिया बावरी और सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब बड़ा मजेदार गाना है। फिल्म के डायलॉग्स और गीतों के बोल गुलजार साहब ने लिखे। गुलजार साहब जिन्होंने ऋषिदा की लगभग हर फिल्म में काम किया। सुन सुन सुन सिंगापुर आपके लिए एक गाना लाया हूँ। आइए सुन लेते हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। यादों का कारवां शुरू तो करें भाई, ये गाने इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए इन्हें सुनकर वापस आइए, मैं इस साल रिलीज हुई दूसरी फिल्मों से भी आपको मिलवाऊंगा। स्टे कनेक्टेड।

पिघलाते पिघा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मजी 24/7 लाइव, और आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। और आज हमारा एक कारवां गुजर रहा है 1980 के साल से।

1980 का साल। भाई ये साल तो आपकी बहुत सारी यादों से जुड़ा हुआ होगा। क्या किया था इस साल, कहाँ थे, कौन कौन सी फिल्में देखी, क्या करते थे, कितने बरस के थे आप, तमाम वो बातें जो आप अब तक किसी से कह नहीं पाए या कहीं होंगी लेकिन उसे हमें भी तो बताइए, शेयर कर सकें तो प्लीज। हाँ, हमारे फेसबुक पेज पर आइए, 1980 की बेहतरीन यादें हमसे शेयर कीजिए। फिलहाल मैं उस साल रिलीज हुई फिल्मों की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि इस साल की अगली फिल्म जो मेरे ध्यान में आ रही है वो मेरी भी फेवरेट है, इट वॉज सुपर हिट मूवी। फिल्म का नाम है कुर्बानी। फिरोज खान साहब के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने खूब कमाई की साहब। फिरोज खान साहब ने इससे पहले धर्मात्मा बनाई थी और वो भी ऐसे ही हिट हुई थी, खूब कमाई की उसने भी। फिल्म ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते थे। फिरोज खान खुद इसमें लीड रोल में थे, इनके अलावा विनोद खन्ना साहब थे इसमें। फीमेल लीड रोल में जीनत अमान थी, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी नेगेटिव रोल में थे, और वहीं अमजद खान, जगदीप, विजू खोटे, अरुणा ईरानी, कादर खान भी इस फिल्म में थे। और कमाल का काम था, मतलब अमजद खान साहब को मैंने पहली बार इस तरह का काम करते हुए देखा था, मैं फैन हो गया था उनका। अच्छा, कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फिरोज खान साहब कुर्बानी के लिए अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी, तो उन्होंने विनोद खन्ना को ले लिया क्योंकि फिरोज खान इतना वेट करने के मूड में थे नहीं, तो उन्होंने विनोद खन्ना साहब के साथ फिल्म शुरू कर दी। फिल्म की स्टोरी कमाल की है, जिसमें फिरोज खान यानी राकेश सर्कस में बाइक स्टंटमैन है लेकिन बाद में वो एक चोर बन जाते हैं। शीला यानी जीनत अमान के साथ इनका अफेयर है लेकिन ये बात ये जीनत को बताना नहीं चाहते कि ये एक चोर है। अमरीश पुरी, जिनका नाम है राका इस फिल्म में, वो एक क्राइम बॉस हैं और विनोद खन्ना उनके ग्रुप में काम करते हैं लेकिन वो इस ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं। शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी दोनों भाई बहन है जो राका से बदला लेना चाहते हैं। राजेश को बहरहाल 2 साल की जेल हो जाती है, वहीं विनोद खन्ना की मुलाकात जीनत अमान से हो जाती है, यानी फिर ये लव ट्रायंगल बन जाता है। जेल से छूटने के बाद तीनों मिल जाते हैं, मतलब विनोद, फिरोज और जीनत अमान। खैर, एक वक्त ऐसा भी आता है फिल्म में जो कि आना लाजमी था कि इन सब में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वरना फिल्म की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। भाई पहले कहानी को उलझाया जाता है फिर सुलझाया जाता है और आपके 3 घंटे यूं हवा में निकल जाते हैं, मतलब तभी तो आपको मजा आता है। लबुलुआब ये कि हैप्पी एंडिंग है जी, मतलब कुल मिलाकर एंड में सब ठीक हो जाता है। फिल्म देखने लायक है और म्यूजिकली हिट है ये फिल्म। फिल्म का म्यूजिक इसकी जान है। फिल्म का एक गाना जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, इसे बिट्टू ने कंपोज किया है और बिट्टू इंडिया बॉर्न इंग्लिश कंपोजर है। इसे गाया है पाकिस्तानी पॉप स्टार नाजिया हसन ने। एक कवाली भी है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। इसे फारूक कैसर ने लिखा है और कंपोज किया है कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने। बाकी गाने भी इन्हीं ने कंपोज किए हैं और इन 2 गानों के अलावा बाकी सब गाने इंदीवर साहब ने लिखे हैं, जिसमें से 2 मेरे फेवरेट हैं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, और क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी। फिलहाल मैं आपकी चाह समझ गया हूँ, आपको इस फिल्म के बेहतरीन नगमे सुनने हैं, मैं बीच में से हट जाता हूँ। कंप्यूटर जी, कम से कम 2 गाने तो बनते हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए सिंगापुर। आप यहीं मेरी जिंदगी में बने रहिएगा, मैं अगली फिल्म का जिक्र करूंगा इन गानों के बाद। स्टे कनेक्टेड।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का गारवा ओनली ऑन रेडियो मसी 24/7 लाइव। मेरा नाम है समर और आज मैं 1980 की फिल्मों का जिक्र कर रहा हूँ। 1980 से दोस्तों 8 फिल्में बनना भी शुरू हो गई थी। हालांकि इंडिया में पैरेलल सिनेमा या जिसे हम न्यू वेव सिनेमा कहते हैं काफी पहले से चल रहा था, लेकिन इस वक्त 8 फिल्मों का दौर जो था अब उसको पहचान मिलने लग गई थी। और हालांकि फिल्में पैसा तो नहीं कमाती थी लेकिन सरकार की मदद जरूर मिल जाती थी तो फाइनेंस हो जाया करता था। और ये अलग तरह का सिनेमा था, लोग अब इसे देखने लगे थे, क्रिटिक्स अब इस पर लिखने लगे थे, तो कुल मिलाकर इसकी चर्चा होने लगी थी। तो अब 8 फिल्मों का जिक्र मैं जरूर करूंगा अपने शो में, लेकिन आगे करूंगा, अभी तो मैं बात कर लेता हूं इसी साल की। भाई देखिए, इस साल तक एक्शन के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्में बन रही थी और उस टाइम के बेहतरीन डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब उस दशक में कई हिट दे चुके थे जिनमें सबसे पॉपुलर थी शोले। इस साल उनकी फिल्म आई शान। रमेश सिप्पी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक स्ट्रिक्ट डायरेक्टर के साथ साथ परफेक्शनिस्ट भी हैं। फिल्म में सुनील दत्त हैं, अमिताभ बच्चन हैं, साथ में शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन बाबी, बिंदिया गोस्वामी, जॉनी वॉकर और यूनुस परवेज भी हैं। और फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में एक बेहतरीन रोल आपको देखने को मिलेगा और वो है शाकाल का, जो कुलभूषण खरबंदा ने निभाया है। कमाल का काम किया है साहब, जबरदस्त एक्टिंग की उन्होंने। और इस बेहतरीन फिल्म को लिखा है सुपरहिट राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने एक बार फिर से। और अगर किसी फिल्म को सलीम जावेद ने लिखा है तो मान लीजिए डायलॉग्स तो उसके कमाल के होंगे ही। शाकाल का एक डायलॉग बड़ा मजेदार है जब वो अपने पालतू मगरमच्छ के लिए बोलता है,
1: अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है।
0: फिल्म में सुनील दत्त साहब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन उनके दो भाई अमिताभ बच्चन और शशि कपूर एक नंबर के लफंगे, मतलब लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं जी, धोखेबाज 420। बिंदिया गोस्वामी और जॉनी वॉकर भी लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं, ठगी करते हैं जी कुल मिलाकर। इन दोनों की मुलाकात अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब से इसी चक्कर में हो जाती है जब जॉनी वॉकर और बिंदिया गोस्वामी इन दोनों को लूट लेते हैं। खैर, फिल्म की स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कॉमेडी और डायलॉगबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर कहानी शुरू होती है जब शाकाल के आदमी सुनील दत्त को मार देते हैं और फिर उसका बदला लेने के लिए दोनों भाई बुरा काम करना छोड़ देते हैं। स्टोरी बहुत ही मजेदार है, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है जिसे SM अनवर ने शूट किया है। फिल्म में शाकाल जहां रहता है वो एक आइलैंड है जो ब्रिटिश चैनल के बीच में। SM अनवर ने शानदार तरीके से यहाँ के सीन्स को शूट किया है हेलीकॉप्टर से, आप देखेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा। म्यूजिक आरडी बर्मन साहब का है और गाने लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। सारे के सारे गाने हिट हैं, आप बताइए कौन सा सुनेंगे। यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां, या फिर जानू मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, या फिर वो प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। कंप्यूटर जी कंफ्यूज हो गए, आप हमारा कंफ्यूजन को दूर करो, कोई दो गाने तो सुनवा दीजिए। हाँ, बहुत ही हिट फिल्म थी, हिट म्यूजिक था इसका, दो गाने तो बनते हैं क्यों सिंगापुर। तो आपके लिए आ रहे हैं ये गाने, शान से सुनिए रेडियो मंजी 24/7 लाइव।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

हेलो नमस्कार, वेलकम बैक सिंगापुर। और हमारा दोस्ताना यूं ही बना रहेगा, भी कभी नहीं टूटेगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर लौट आया हूँ लेकर यादों का कारवां। और आज हमारा कारवां कहाँ से गुजर रहा है? यू गेस्ड इट राइट, 1980 के साल से। काय का गैस, आप सुन तो रहे हैं, आपको पता तो है, फिर भी चलिए मैंने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। 1980 से गुजर रहा, लेकिन इसके लिए कोई प्राइस नहीं आपने बताया तो चलिए अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1980 से जुड़ी तो बहुत सारी यादें आपकी हमारी, तो आइए शेयर करते हैं ना। आइए फेसबुक पेज पर आइए और वहां दिल खोलकर अपने दिल की बातें लिखिए जो 1980 के साल से जुड़ी हो। जैसे कि उस वक्त आप कहां थे, कितने बरस के थे, फिल्में देखना शुरू किया था नहीं किया था, आपके फेवरेट एक्टर कौन थे, एक्ट्रेस कौन थी, कौन सी फिल्म आपको उस साल की सबसे अच्छी लगी, कुछ भी बता सकते हैं, या कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुना सकते हैं आप हमें, मतलब लिख कर बता सकते हैं, सुना मैं दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो चलिए अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। हमारी अगली फिल्म है 1980 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे बड़ी हिट फिल्म, सलीम जावेद की कलम से निकली हुई एक और ब्लॉकबस्टर कहानी, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने। और फिल्म थी राज खोसला की आखिरी बड़ी हिट, जिसे प्रोड्यूस किया था यश जौहर साहब ने। फिल्म का नाम अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, दोस्ताना। इसमें भी एक बार फिर अमिताभ बच्चन साहब के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, प्राण साहब, जगदीश राज, हेलन, अमरीश पुरी थे। फिल्म की स्टोरी में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जिगरी दोस्त हैं, उन्हीं की कहानी है दोस्ताना। वो होते ना एक ही थाली में खाने वाले, फिर आती है जीनत अमान और दोनों को जीनत अमान से हो जाता है प्यार, लेकिन जीनत चाहती है अमिताभ को। शत्रुघ्न सिन्हा भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन एक तरफा प्यार करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा लॉयर है इस फिल्म में और अमिताभ पुलिस इंस्पेक्टर। अमिताभ अपराधियों को पकड़कर जेल में डालते हैं और रवि यानी शत्रुघ्न सिन्हा उनकी बेल करवा देते हैं, और वो डागा यानी प्रेम चोपड़ा से मिले हुए हैं। खैर एक दिन रवि विजय से यानी अमिताभ बच्चन से कहते हैं कि वो शीतल यानी जीनत अमान से प्यार करते हैं। विजय दोस्ती के लिए सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन बाद में डागा दोनों में दरार डलवा देता है एंड फिर दोनों दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं। और फिर क्या होता है भाई, देखिए उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी, देख लीजिएगा जब भी मौका मिले, बहुत अच्छी फिल्म है। और गानों के बारे में तो क्या कहें आपको, टाइटल ट्रैक बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, ये तो कमाल का था ही। इसके अलावा जीनत अमान और अमिताभ बच्चन साहब का एक रोमांटिक ट्रैक है जो मुझे बहुत पसंद है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। और भी गाने वो भी कमाल के हैं। एक वो कितना आसान है कहना भूल जाओ, कितना मुश्किल है मगर भूल जाना, आई लाइक इट। इन गानों को लिखा और बनाया है हिट स्टार टीम आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ने। बाद में इस फिल्म के कई रीमेक भी बने, लेकिन भैया ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो अब कंप्यूटर जी, दो गाने बनते हैं दोस्ताना से, बाकी आपकी मर्जी है। सिंगापुर मैंने आपकी तरफ से सिफारिश कर दी है, शायद कंप्यूटर जी मान जाए। हेलो हेलो प्लीज, हाँ दो गाने प्लीज। हाँ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ। रेडियो मसी 24/7 लाइव को आप सिंगापुर आप सुन सकते हैं 24 घंटे सातों दिन, और ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो है। तो कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning.
6: यादों का कारवां में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो. तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं मैं 1980 के साल में बी आर चोपड़ा साहब के प्रोडक्शन और उनके बेटे रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी थी दी बर्निंग ट्रेन, उसका अब मैं जिक्र करने जा रहा हूं. ये फिल्म 1975 में आई जैपनीज डिजास्टर मूवी दी बुलेट ट्रेन का रीमेक थी. फिल्म का बजट बड़ा होने के साथ साथ फिल्म की स्टार कास्ट और म्यूजिक भी बहुत बड़ा था और शानदार भी था. अब जरा स्टार कास्ट को देख लीजिए, सुन लीजिए इसके बारे में. विनोद खन्ना थे इसमें, धर्मेंद्र, डैनी, परवीन भाभी, हेमा मालिनी, मदनपुरी, जितेंद्र, इंद्राणी मुखर्जी, रंजीत, और ये सब तो मुख्य किरदार में थे. सिमी ग्रेवाल का नाम लिया कि नहीं मैंने? अरे भैया सिमी ग्रेवाल भी थी इसमें भाई, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, सबके नाम मैं शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी. धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और डैनी, ये तीनों बचपन के दोस्त हैं. डैनी को गुस्सा जल्दी आता है और वो खासकर विनोद खन्ना की सक्सेस से जलते हैं. तीनों का सपना है सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन बनाना. तीनों एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और विनोद खन्ना का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है. डैनी के मन में उनके लिए जेलेसी और बढ़ जाती है. इसी बीच धर्मेंद्र हेमा मालिनी से प्यार करने लग जाते हैं, विनोद खन्ना जीनत अमान से, लेकिन डैनी भी जीनत अमान को पसंद करते हैं. यही तो लोचा हो जाता भाई, लेकिन जीनत विनोद से शादी करना चाहती है और एक बच्चा भी हो जाता उनके. ये सब डैनी के मन में विनोद के लिए और भी ज्यादा दुश्मनी पैदा कर देते हैं. वेल, अब आप समझ गए होंगे कि फिल्म का विलेन कौन है. खैर साहब, ट्रेन शुरू होती है दिल्ली और मुंबई के बीच और इनॉग्रेशन के दिन ही ट्रेन में आग लग जाती है. अब ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये सब आप फिल्म देखकर ही जान पाएंगे. लेकिन इतनी बड़ी ट्रेन में लगी आग को कैसे बुझाया गया, क्योंकि ट्रेन के ब्रेक भी फेल कर दिए गए हैं, ये अपने आप में देखने लायक है. ये फिल्म आज भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म है. म्यूजिक इसमें आर डी बर्मन साहब का और गाने लिखे हैं साहिर लुधियानवी जी ने. वेल, अभी आप इस फिल्म के ये गाने सुनिए. हालांकि मुझे इस फिल्म का वो जो कवाली है ना, पल दो पल का साथ हमारा, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और आपको भी पसंद आएगा, सुनेंगे. तो आइए पल दो पल का साथ हमारा, और इन पल दो पलों के बाद हम यही मिलेंगे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. आप इन समर के साथ बने रहिए.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जो है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। देखिए सिंगापुर, आज हम यादों के कारवां में 1980 का जिक्र कर रहे हैं। 1980, मुझे मालूम है अंतरा मुझे वहां से आंखें दिखा रही है, दिखता नहीं है रेडियो पर, हमेशा बोलते देखिए देखिए। हाँ, अरे ये मन की बात है अंतरा, तुम नहीं समझोगी, जब हम कहते हैं देखिए तो हमारे मन के अंदर झांककर देख लेते हैं। हाँ, समझो, अब मुस्कुरा रही हैं। तो अब मैं जिस अगली फिल्म का जिक्र करने जा रहा हूँ ना, उसका नाम है इंसाफ का तराजू। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 1976 की फिल्म लिपस्टिक पर यह फिल्म बेस्ड थी और इस फिल्म में राज बब्बर थे खतरनाक रोल में, साथ में पद्मिनी कोल्हापुरी थी, जिनत अमान थी, श्रीराम लागू थे, दीपक पराशर थे, सिमी ग्रेवाल और धर्मेंद्र इसमें गेस्ट अपीयरेंस में थे। फिल्म की स्टोरी बड़ी कमाल की है और इसी की वजह से यह फिल्म हिट हुई। अडल्ट फिल्म थी अभी, इसमें राज बब्बर साहब जैसे मजबूत एक्टर थे। फिल्म में राज बब्बर एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इनकी मुलाकात मॉडल जीनत अमान से होती है, बाद में इनकी दोस्ती हो जाती है और राज बब्बर साहब जीनत अमान का फोटोशूट करवाते हैं और एक दिन उन्हें देखने के लिए उनके घर जाते हैं, मतलब जीनत अमान के घर। लेकिन दूसरे दिन राज बब्बर के घर पुलिस आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है, मतलब जीनत अमान उन पर रेप का चार्ज लगाती है। खैर, राज बब्बर साहब एक लॉयर करते हैं, श्रीराम लागू उनके लॉयर है, वो उनका केस लड़ते हैं। फिल्म की कहानी भी यही है कि इंसाफ किसे मिलता है, लेकिन बी आर चोपड़ा साहब ने इस कहानी को इतने कसे हुए अंदाज में दिखाया है कि आप फिल्म से बंधे रहते हैं। फिल्म में चार गाने हैं जिनको रविंद्र जैन साहब ने कंपोज किया है, गाने लिखे हैं साहिर लुधियानवी जी ने। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को, जो इस फिल्म को देख नहीं पाई क्योंकि ये फिल्म ए सर्टिफाइड थी और पद्मिनी कोल्हापुरे की उम्र उस वक्त महज 16 साल की थी। बेस्ट एडिटिंग के लिए B.S. माने को अवार्ड मिला और बेस्ट डायलॉग्स के लिए शब्द कुमार साहब को इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला फिल्म फेयर का। खैर, अभी इस फिल्म के ये गाने सुन लेते हैं, तब तक आप यहीं रहिएगा, मैं बस यूं गया और यूं आया, वादा

वेलकम बैक। कहा था ना यूं गया और यूं आया। मेरा नाम है समर, एक बार फिर से लौट आया हूँ यादों का कारवां के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज हमारा कारवां गुजर रहा है सिंगापुर 1980 के ईयर से। चलिए अब इस कारवां की अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं बगैर टाइम खोए। आशा है उस फिल्म का नाम। जाने माने प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सुपरहिट रही थी। फिल्म में थे जितेंद्र, रीना रॉय और तल्लूरी रामेश्वरी, टी रामेश्वरी या रामेश्वरी के नाम सुने आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। ये तीनों लीड रोल में थे इस फिल्म में। साथ में थे गिरीश कनाड जो कि खुद एक बड़े प्ले राइटर हैं और बेहतरीन एक्टर भी हैं। बाद में इस फिल्म का तेलुगु और तमिल भाषा में भी वर्जन बना, रीमेक बना बेसिकली। अच्छा एक बात और आपको बताता हूँ, इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी हैं। जी हाँ, उन्होंने एक छोटा सा रोल किया इस फिल्म में और ये पहली मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन दिखाई दिए। एक्चुअली जी ओम प्रकाश साहब जो है ना, जो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, वो ऋतिक रोशन के नाना जी हैं। फिल्म में जितेंद्र एक ट्रक ड्राइवर हैं। एक बार रीना रॉय को लिफ्ट देते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रीना रॉय इन्हें अपना अच्छा दोस्त बना लेती हैं। उधर जितेंद्र रामेश्वरी को पसंद करते हैं और उनसे शादी भी कर लेते हैं। एक दिन जितेंद्र का एक्सीडेंट हो जाता है और सब समझते हैं कि वो मर गए। वहीं जितेंद्र की माँ प्रेग्नेंट रामेश्वरी को कहती है कि तुम तुम्हारे घर जाओ। जब रामेश्वरी अपने घर पहुंचती है तो उनके पिता की मौत हो जाती है। परेशान होकर रामेश्वरी एक नदी में कूद जाती है लेकिन लोग उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन देखिए फिल्म है, हीरो कैसे मर जाएगा इतनी जल्दी, उस वक्त तो नहीं मरता था कम से कम। जितेंद्र वापस लौटते हैं तो उनकी माँ कहती है कि तेरी बीवी तो मर गई। इधर रीना रॉय उसे फिर मिल जाती हैं एंड परेशान जितेंद्र को वो सहारा दे देती हैं। दोनों एक दूसरे को अब पसंद करने लग जाते हैं एंड वो शादी करने ही लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन गिरीश कनाड रामेश्वरी को बताते हैं कि उनका पति जिंदा है और वो दूसरी शादी कर रहा है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कहानी किस ओर जाती है। फिल्म में एक गाना लास्ट में आता है जो 1980 की बिना का गीतमाला में नंबर 4 पर था। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, कमाल का गाना। बाकी के 5 गाने भी हिट हैं। हिट स्टार जोड़ी आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मी प्यारे का म्यूजिक। तो अभी तो मैं आपको ये वाला गाना सुनाने वाला हूँ, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। बड़ा मजेदार गाना है, मेरा सुनने का मन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरूर सुने क्योंकि जो मेरे मन में मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे और जो आपके मन में 1980 से जुड़ी यादों के जो किस्से हैं वो हमसे शेयर कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। एक दूसरे से बांटेंगे, सबको बताएंगे आप क्या करते थे उस वक्त, क्या करते थे बाल मसाजना 1980 में, हमें आकर बताइए हमारे फेसबुक पेज पर। आपसे मिलूंगा इन गानों के बाद। रेडियो मसी 24/7 लाइव आपने ज्वाइन किया हुआ है। कीप एंजॉयिंग।

वेलकम बैक, यादों के कारवां आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मेरा नाम है समर और आज हमारा कारवां कहां से गुजर रहा है 1980 के साल से, और इसी साल की कुछ सुपरहिट फिल्मों की हमने बात की, अभी कुछ और बची हैं। अब जो फिल्म मेरे जहन में आ रही है वो है राम बलराम। दिग्गज डायरेक्टर चेतन आनंद के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म और टीटू ने इसे प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म सुपर हिट थी। अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र की एक साथ ये तीसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों शोले कर चुके थे और चुपके चुपके में भी नजर आए थे। धर्मेंद्र इसमें राम है और अमिताभ बलराम। अजीत प्रेम चोपड़ा और अमजद खान इसमें विलेन की भूमिका में। फिल्म की स्टोरी दो भाइयों की है जो बड़े आराम से अपने माँ बाप के पास रहते हैं, लेकिन इनका जो चचा है ना चचा, वो इनके पिताजी का मर्डर कर देता है। बाद में वो खुद उन दोनों बच्चों को कहता है कि वो अब खुद दोनों का ख्याल रखेगा, तो बलराम को भेज देता है वो पढ़ने, जहां अमिताभ बच्चन बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनते हैं एंड धर्मेंद्र को वो अपने साथ रखता है और उस पर अत्याचार भी करता है। मतलब धर्मेंद्र एक मैकेनिक है और वो जो तनख्वाह लाते हैं वो भी वो सारी ले जाता है, मतलब चचा, और बहुत कम उसे खर्चा पानी देता है। वेल, जब अमिताभ बच्चन पुलिस ऑफिसर बनकर वापस आते हैं तो उसके बाद उनका चाचा यानी जगत पाल धर्मेंद्र को बड़े स्मगलर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि राम को बलराम बचाएगा। खैर, धीरे धीरे उसका प्लान सफल भी हो जाता है, लेकिन बाद में राम बलराम दोनों खेल खेल जाते हैं। बलराम राम को खुद अमजद खान की स्मगलिंग टीम का मेंबर बना देता है ताकि उनकी खबर उसे मिलती रहे और वो उन्हें अरेस्ट कर सके। बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका एंड बहुत ही कमाल का बड़ा रोचक है। फिल्म में फीमेल लीड में रेखा है, जीनत अमान है, और इस फिल्म के दो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिनको आनंद बख्शी साहब ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने कंपोज किया है। एक तो वो एक रास्ता आहा आहा, दो राही आहा आहा, एक चोर एक सिपाही आहा आहा, और एक वो जिसमें अमिताभ बच्चन बहुत ही स्मार्ट लगे हेड पहने हुए और काउबॉय जैकेट है उनकी, वो कौन सा गाना है, यार की खबर मिल गई गई। वेल, आप इन दो मस्त गानों को सुनिए और वापस लौट कर आइए रेडियो मजी 24/7 लाइव पर। समर कर रहा है आपका इंतजार। आज 1980 की यादें ताजा कर रहा हूं मैं इन फिल्मों के गानों के साथ। स्टे कनेक्टेड।

वेलकम वेलकम वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत यादों का कारवां। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। सिंगापुर 1980 की सुपरहिट फिल्मों का मैंने जिक्र किया, उन्हीं की कहानी आपको सुना रहा हूँ। इस कारवां में अब एक ऐसी फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा जिसने खूब सारे अवार्ड्स जीते, लेकिन इस फिल्म को बनने के बाद 4 साल लगे रिलीज होने में। वो कहते ना लेकिन के देर आए दुरुस्त आए। फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। फिल्म का नाम, एनी गेसेस? बताइए, छूकर बताइए। जी हाँ, छूना, ये गैस है, स्पर्श है फिल्म का नाम। देखा जाए तो एक आर्ट फिल्म है। फिल्म की स्टोरी बेहद कमाल की है और उस दौर में बन रही फिल्मों से बिल्कुल अलग है। स्टार कास्ट की बात करूं तो नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में एक ब्लाइंड स्कूल के टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो खुद भी देख नहीं सकते हैं। साथ में उनके दोस्त हैं ओम पुरी, शबाना आजमी एक सिंगर हैं जो विधवा हो चुकी हैं। एक दिन गलती से नसीरुद्दीन शाह साहब शबाना आजमी के घर पहुंच जाते जहां वो रियाज कर रही होती। बाद में एक दिन किसी पार्टी में दोनों की फिर से मुलाकात हो जाती है, जहां नसीरुद्दीन शाह साहब उन्हें यानी शबाना आजमी को आवाज से पहचान लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती है। नसीर साहब उन्हें अपने स्कूल में म्यूजिक पढ़ाने का प्रपोजल दे देते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। दरअसल सिंगापुर फिल्म का कंटेंट बाकी फिल्मों से अलग था, इसीलिए फिल्म सुपरहिट रही। क्रिटिक्स ने बहुत पसंद की और एक स्पेशल वर्ग था जो फिल्म की बारीकियों को पहचानता था, उन्हें ये फिल्म बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। हालांकि कमर्शियली ये फिल्म उतनी हिट नहीं थी। तो कहानी यूं ही चलती रहती है, बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। फिल्म बहुत अच्छी है, देखेंगे तो आपको बहुत टच करेगी। फिल्म का नाम भी टच ही है, स्पर्श है ना। इस फिल्म में अगर म्यूजिक की बात करें तो 4 गाने हैं जिनको कनु रॉय ने कंपोज किया है। फिल्म में 4 गाने सुलक्षणा पंडित ने गाए हैं, जो थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन आपको पसंद आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर हैं सई परांजपे, जिन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला उन्हें। इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह साहब को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर। तो चलिए, इतनी बेहतरीन फिल्म है, अब इसके कुछ गाने सुन लेते हैं, इसकी यादें ताजा हो गई। मैंने ये फिल्म दूरदर्शन पर देखी थी, बहुत पहले आई थी, मैं बहुत छोटा था, बहुत अच्छे से तो मुझे इसकी कहानी याद नहीं है, लेकिन तब मुझे ये फिल्म समझ नहीं आई थी। आई होप कि अब मुझे कभी वक्त मिले और मैं ये फिल्म जरूर देखूं। आपको भी वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। और 1980 से जुड़ी इन बेहतरीन फिल्मों को आपने कब देखा था या नहीं देखा था, ये गाने कब सुने थे, कौन सा गाना आपका फेवरेट है, सब कुछ बताइए हमें हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम है जमर, लौटूंगा थोड़ी देर में यहीं पर। स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मजी 24/7 लाइव बराम है जबर के साथ। और आज यादों का कारवां में हमने सैर की 1980 के बेहतरीन साल की। वैसे आपने फिल्में बहुत सारी देखी होंगी, देखी हैं ऑफ कोर्स, और आपने डुप्लीकेट यानी डबल रोल कैरेक्टर वाली फिल्में भी देखी होंगी, देखी है ना? अरे भाई वही सीधा गीता, जुड़वा, हम दोनों, राम और श्याम, दो कलियां, डॉन, अप्पू राजा, डुप्लीकेट वगैरह वगैरह। इनमें कॉमन बात पता है क्या थी? कॉमन बात ये थी कि जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें डबल रोल के किरदार में वही एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं, यानी कि एक ही एक्टर को दो अलग अलग रोल में दिखाया जाता है। लेकिन एक मूवी में गजब का एक्सपेरिमेंट किया गया 1980 में, जो फिल्म आई थी, नाम था उसका कर्ज। जी हाँ, सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी मूवी, जिसमें ऋषि कपूर साहब और टीना मुनीम की जोड़ी थी। रोल था एक्टर के पुनर्जन्म का, लेकिन इसमें उसी एक्टर को रिपीट नहीं करके किसी दूसरे एक्टर को रोल दिया गया। समझ रहे हैं मैं क्या करूं? चलिए फिर से समझिए। इस फिल्म में शुरुआत में ही एक्टर राजकिरण के कैरेक्टर की मौत हो जाती है, या यूं कहो मर्डर कर दिया जाता है उनका। पर कुछ साल बाद उसका पुनर्जन्म होता है, पर उसकी शक्ल हर फिल्म की तरह हूबहू वैसी नहीं होती, बिल्कुल अलग होती है। अब समझ गए? तो जनाब, एक रोल राजकिरण साहब ने किया, वहीं दूसरा रोल ऋषि कपूर साहब ने किया। लेकिन वाकई कमाल की मूवी थी ये, पूरा पैसा वसूल जिसे कह सकते ना वो थी ये। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा, और सॉन्ग्स की तो पूछे ही मत भाई साहब। आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे हैं जो पूरी तरह से यूथ लवर्स इश्कबाजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिखे। म्यूजिक कंपोज करके लिरिक्स में जान डाली बेहतरीन संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। कुल 6 गाने इस फिल्म में, और सभी के सभी टू गुड है, लाजवाब है, क्या कहने इनके। वैसे कुछ तो आपको भी याद होंगे, एक वो ओम शांति ओ मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना वो दीवानों, मैंने प्यार करके, अब क्या कहूं। एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने, आहा क्या बात है। और एक वो तो भैया कल्ट है, एक हसीना थी एक दीवाना।

एक हसीना थी, एक दीवाना था, और वो भी तो इसमें, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। वेल, आपको सारे गाने याद है मुझे मालूम है, लेकिन कंप्यूटर जी दो गाने तो बनते ही है ना जाते जाते, सुनवा दीजिए। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा सिंगापुर, आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल तो रखेंगे, साथ में अपने अपनों का ख्याल रखेगा, उनके साथ अपने आसपास के लोगों का, चीजों का ख्याल रखेगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बन के सज जाइएगा, और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आपको लोग याद करें, और एक दिन मैं आपकी कहानी सुनाऊं यहीं पर। चलिए आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे यहीं पर। यह है रेडियो मंजी 24/7 लाइव, 24 घंटे 7 दिन आपके साथ, सिंगापुर में हिंदी का एकमात्र बॉलीवुड रेडियो। सुनिए, मजे कीजिए और जोश में रहिए। बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: थैंक यू तुषाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
3: थैंक यू तुषाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
4: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
3: थैंक यू
2: वी लव यू।
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
6: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: 40% off, 40% joy Alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go,
4: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
5: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
0: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: 40% ऑफ, 40% जॉय आलुकास,
3: 40% ऑफ, ओ माय गॉड, लेट्स गो, लेट्स गो।
4: ऑफर ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। जॉय आलुकास लाया है बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड, पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज। Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
5: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
5: Perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: 40% off, 40% joy alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
5: Suna suna baba suna suna baba suna suna suna.
4: Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ गाने का नाम है, यहाँ पर हमें कोई नहीं रोक सकता है, आहिस्ता और हम इम्पॉसिबल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मस्ती मैडनेस।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: वैसे आहिस्ता आहिस्ता में भी मजा है, क्या कहती हो रेणुका जी इस बारे में, आपका क्या ख्याल है ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग?
0: 7:06 पे शुरू हो जाती है यार ये तो। कुछ नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए भाई। किसी ने ये कहा कि इस शो का नो फिल्टर फोकस है, तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है अंतरा जी ने कि 7:07 हो गए और ये लगी हुई है, शुरू से ही गंदी बातें शुरू हो चुकी हैं। खैर आप लोग तो उठ ही जाइए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ अंतरा जी, तो क्या कहना चाहती हैं आप?
2: हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँ, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कही, अब किसी और ने किसी और तरीके से ले ली, उसमें मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की क्या ही गलती है, मैं तो मासूम सी एक लड़की हूँ, सुबह सुबह आ गई हूँ काम पे अपने, है ना?
0: जी जी, इनकी मासूमियत पर तंस ना कसते हुए आगे बढ़ेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 पर अगला गाना इसी मासूम ने लगाया है आज हमारे इस शो पर। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है,
3: मेरे महबूब, मेरे महबूब।
0: और अगले आगे भी गाने सुनते जाइए, आप क्या क्या लगाए हैं इस इनोसेंट सोल ने। वेल ऑन दैट नोट गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग। अंतरा जी, आपका वीकेंड कैसा रहा? ये वीकेंड आने वाला कैसा होने वाला है ये बताइए।
2: अगर इतना ही पता होता तो फिर तो मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट होता। बात ही अलग हो जाती।
0: देखा हम कितना उसी मोमेंट में जीने वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है आने वाले वीकेंड पर। खैर आप भी अपने वीकेंड के प्लान्स बताइए, फिलहाल के लिए गाना सुनते हैं एंड वी विल बी बैक विद द नो फिल्टर न्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम फटी हुई चड्डी। गुड मॉर्निंग।
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: हमारे कर्तव्य के आगे कोई नहीं आ सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं, फटे हुए कपड़े भी नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मस्ती मैडनेस।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: मैं बता रही हूँ, रिसेंटली इन्होंने बोली है बहुत सारी अच्छी वाली हिंदी और तब से लेकर अब तक ना उनके कंटिन्यूएशन में चलता ही हुआ जा रहा है। सो यस, आइए, स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के मस्ती मैडनेस में। मैं हूँ अंतरा, यह है रेणू का।
0: तो भाई रेणू का कह के इन्होंने मेरे को न्यूज भुला दी मेरे को। खैर, उस बारे में बात करेंगे, मेरी बहुत सारी हिंदी के बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर

0: आपको फ्रांस लेके जाना चाहती हूँ। एक 20 साल के फ्रेंच प्रोफेशनल साइक्लिस्ट जिनका नाम है मैक्सिम डी गोम्बली, उन्होंने रेस करी अपनी बिब शॉर्ट्स, जो कि होती है, पहनते हैं ना साइक्लिस्ट जो पहनते हैं वो टाइट वाली शॉर्ट्स जो होती है, बिल्कुल वो वाली है ना। तो भाई अब ऐसा हुआ कि उनका जो बम है शायद जब हिल रहा था अप डाउन और वो रेसिंग हो रही थी पूरी साइकिल पे, तो वो जो बीच में से चीर के वो बम स्प्लिट हो गया, बम मतलब कि उनकी शॉर्ट्स स्प्लिट हो गई। अब क्या है कि कैमरे तो हर जगह होते हैं ना, जब एक नेशनल लेवल की से पूरी पूरी रेस हो रही है तो ऑब्वियसली कैमरेज आगे भी हैं पीछे भी हैं, तो एक कैमरे ने कैप्चर किया कि भाई इनकी तो लिटरली फट गई है। तो फिर उसके बाद देन देयर वाज नो चॉइस बट दिस मैन डिड नॉट स्टॉप, ही कंप्लीटेड हिज रेस, मतलब डिस्पाइट फटे हुए कपड़े व्हाटएवर, कर्म के आगे कोई नहीं आ सकता।
1: आज की रात मजा
2: बॉस, अलग लेवल रिस्पेक्ट आ रही है मुझे इस आदमी के लिए यहाँ से। मतलब इट टेक्स अ लॉट टू डिसाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेदर यू वांट टू कंटिन्यू या फिर सिलनी है।
0: हाँ, एंड ज्यादा कंफर्टेबल हो गया होगा राइट, क्योंकि सोच थोड़ी लूज हो गई शॉर्ट्स, तो कितने मजे से झूल झूल के चला रहा होगा उसके।
2: आई हैव अ क्वेश्चन ऑन द कंफर्ट, क्योंकि वो जो रेसिंग वाली साइकिल्स की सीट्स होती है ना वो बड़ी नैरो सी होती है।
0: टेल मी अबाउट इट। ठीक है चलो मिलते हैं अगली खबर के साथ में, जस्ट इन मिनट। गुड मॉर्निंग,
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: दे दिल की फीलिंग्स।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.
3: गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बहुत ही शांति है इस समय और बहुत बढ़िया लग रहा है। एयरकॉन को बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा मौसम यहाँ पर अब गर्म लग रहा है, लेकिन अंतरा जी टोटली एक्साइटेड लग रही हैं अपनी अगली खबर लेके। तो चलिए देखते हैं क्या लाई है
4: दुनिया। क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
5: जब गर्मी लगी रही है तो मैंने सोचा कि स्टूडियो का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। वेयर की ही बात की जाए, बट उससे पहले मुझे एक बात बताइए रेणुका, कि जब आप अगर किसी के फैन है फॉर एग्जांपल,
3: जी,
5: तो उस फैन की कोई भी पोजीशन अपने पास रखने के लिए आप किस लेवल तक, मतलब उसका यूज्ड हैंग की अगर कहीं गिर जाए विल यू कीप इट विद यू?
3: नहीं, मैंने कई बार अपने शो पर ये बात कही है कि कॉकटेल के बाद वो दीपिका पादुकोण की के कपड़े आए थे हमारे पास, हमारे पिछले स्टूडियो में 3 घंटे वाले शो पे, और हम लोग उनको दे रहे थे अपने लिसनर्स को। सो आई लुक्ड एट देम एंड आई सेड व्हाट कैन बी द क्रेज, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो फ्रॉम आर देन जॉक, यू नो, हु सेड कि भाई ये तो पागलपन होता है इन चीज़ों के पीछे, और मैं देख रही हूँ कपड़े चीथड़े से लग रहे थे, भाई क्या करोगे तुम इसको ले जाके, यू नो, बट दैट्स माई एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज थिंग्स। तुम क्या अंडरवेयर की बात कर रही हो?
5: You that big a fan to do something
3: never
5: like that, right?
3: No, no.
5: But there are people that is right जो इस तरह की चीजें करते हैं। So Drake का नाम सुना होगा, जो music से थोड़ा सा connected रहते हैं, तो उन्होंने Drake का नाम जरूर सुना होगा। तो he has purchased apparently auction में, ठीक है, Michael Jackson की used underwear। पूछो कितने में?
3: कितने में?
5: Yes.
3: कितने में?
5: $3,65,000.
3: Are you kidding me? यहाँ पे लहंगे की बात हो रही है, महंगे लहंगे की बात हो रही है, वहां चड्डिया खरीदी जा रही है वो भी 3.5-4 लाख $ में, और वो भी यूज्ड अंडरवेयर। मैं कहती हूँ धुला भी हो तो वो भी चलो समझ में आता है, तो वो सूंघता उसको करता क्या है? आई मीन टू मच।
5: दो चीज है, ये भी तो पता नहीं है ना कि हाउ टू प्रूफ, मतलब हाँ, कि उसी का यूज है, ये हाँ, भी तो है ना,
3: ये भी बात है, पता नहीं भाई। फैन है, अंधे फैंस होते हैं, जो भी होते हैं क्या ही कहेंगे। ऑन रेडियो मस्ती 24/7, व्हाट्स योर प्राइस्ड पोजेशन फ्रॉम अ फैन, जरूर बताइएगा। और वो माइकल जैक्सन अंडरवेयर धोता क्यों नहीं था पहले ये बता।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: शादी करते टाइम हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू डाइवर्ज ऑल द सीक्रेट्स एंड एनी बीमारीज दैट यू नो ईदर ऑफ द पार्टनर्स हैज और हैज द पोटेंशियल टू हैव. मतलब कितना जरूरी होता है सच बोलना शादी के टाइम पर. ऑन रेडियो मसी 24/7 थोड़ा सी संजीदा खबर इस समय.
2: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है.
3: ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल आप कोई भी ऐसे सवाल पूछता है तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ जाता है जी हाँ मस्ती शादी के लिए. लाइक इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग टू मी. एनीबडी टॉक्स टू मी अबाउट एनी प्रॉब्लम लाइक डियर मस्ती.
1: But Antra, we can make fun of that show as much as we want because हमारे दिमाग में 24 घंटे यही चलता है.
3: लेकिन I'm saying that I am so involved into it that whenever now anybody talks to me about any issue, I am like कि तुम उस show में क्यों नहीं पूछते?
1: And you're right. And you're right because मेरे हाल ही में एक दोस्त के साथ में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है. किसी ने उसकी कोई शिकायत लगा दी इधर उधर गवर्नमेंट में तो वो परेशानी में है और यू नो वाज टॉकिंग टू मी एंड आई वाज थिंकिंग डियर मस्ती. मतलब ये तो डियर मस्ती वाला क्वेश्चन है. यू सो राइट. हाँ तो डियर मस्ती जैसा ही ये सवाल है कि भाई कितना जरूरी है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की खबर है. वहां पर क्या हुआ कि एक 25 साल का जो ग्रूम था राइट शादी हो रही है आप ये सोचो तो सडनली वो अपना बैलेंस लूज करता है एंड ही फॉल्स फ्रॉम द चेयर ड्यूरिंग द रिचुअल्स. ओके अच्छा भाई कई लोग सोचेंगे ठीक है मैं हो सकता है ही इज यू नो ही इज कंज्यूम्ड सम स्टफ व्हिच इज शादी पे खुशी में यू नो इसलिए गिर गया लॉस्ट हिज बैलेंस और व्हाटएवर. लेकिन उसके बाद क्या हुआ बड़े सारे रिलेटिव्स ने ये भी नोट किया कि उसको काफी परेशानी हो रही थी पूरे के पूरे टाइम एंड फिर समझ में आया कि ये इंटेंशनली छुपा रहा है क्रॉनिक स्पाइनल डिसऑर्डर. मतलब ही इज नॉट stable to sit, he cannot walk properly and all that. So the bride stepped up and she said I am sorry medical report chahiye mereko is time shaadi nahi karni, you know. And usme bhi it takes a lot of guts right and then of course the police and everything and the shaadi was called out because waqai us bande mein problem thi. To kitna zaruri hota hai na yaar sach bolna. Matlab kya hai ye jhoot kyun bol rahe ho hain.
3: That is true. एक बार बोल के फिर देख लो ना whether someone wants to stay with you or just kind of leave you.
1: हाँ exactly because
3: transparency में मतलब uncomfortable है but बहुत sorted रहता है सामान.
1: बिल्कुल सही बात है. मेरा एक दोस्त होता था बहुत जमाने पहले उसका बहुत बड़ा होता था वो आदमी मतलब मेरे उम्र के हिसाब से and he went and got his engagement done with a wig. And he was bald, right? तो हम सोचते थे अभी हम क्या करें because suddenly you become an accomplice to a, you know, crime which is about to happen. But anyway, on radio, मस्ती guys. Serious बात है सच बोलना सीख लो यार नहीं तो पूरी जिंदगी लड़ोगे मरोगे और फिर क्या divorce होएगा पैसे बांटने पड़ेंगे all the mess. क्यों करना है ना.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: मजे ही आ गए मुझे तो. मतलब ये जो तरीका निकाला है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा फन और क्रिएटिव लगा.
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: रेडियो मस्ती 24/7 पर मजे सिर्फ हमें ही नहीं, आपको भी आ रहे हैं, ये हमें आपके मैसेजेस से पता लग रहा है यहाँ पर. तो भाई इस घंटे के एंड में लग रहा है अंतरा जी कुछ खास खबर लेकर आई, क्योंकि इसकी ना हाथ में चाय वाय सब सीधी होगी, इसकी एक्साइटमेंट देखो शक्ल पे.
0: अरे बड़ा ही कूल सा तरीका निकाला. तो ये जो है हमारे प्रोफेशनल एक रेसलर हैं, तो उन्होंने शादी की, ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना में कहीं पर.
2: हाँ.
0: तो अब मियां बीवी ने मिलकर कैसे एक एक एक चीज निकाला कि भाई कौन घर का काम करेगा, ये कौन कैसे डिसाइड हो. ठीक है, सो दे actually hosted a wrestling match. Wife was allowed to decide to कि जिसके दोनों में से किसी के ऊपर भी दाव लगा. अगर तो तू जीती,
2: हाँ,
0: तो फिर मैं करूँगा household work for the rest of the life.
2: Okay.
0: I mean, क्या मजेदार. मतलब ठीक है, जब आप when you get into these things you find it so funny as well as creative at the same time. Like if wrestling ka match agar wo jeet gayi to sare zindagi ke liye sorted ekdam wahi pe mamla.
2: Yaar ek baat bata, ye theek baat nahi hai, kyunki dekho jahan bhi physical strength ki baat hai wahan biologically auraton mein thodi si kam hoti hai as compared to men, right? So ye to shuru se hi rigged hai.
0: This is not between the husband and the wife.
2: Oh, acha acha.
0: Between two professional wrestlers and she can choose anyone of them.
2: हाँ वो ठीक है, फिर तो बड़ी fair game है. मुझे मजा आया, सोच सोच मैं तो शुरू हो गई थी women's rights के लिए खड़े होने के लिए already.
0: आपसे पहले तो मैंने ही खड़े हो जाना था. ये तो दो प्रोफेशनल रेसलर्स थे, इसीलिए मैं इतने फन से बात बता रही थी.
2: फिर ठीक है भाई, ठीक है भाई, हमारा वाला जीतेगा हमारा वाला मोटा जीतेगा.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: एक लड़की और एक लड़का जब दोनों स्कूल जाते हैं तो दोनों का रिएक्शन, दोनों का सेलिब्रेशन, दोनों के दुख कितने अलग होते हैं ना अंतरा. मतलब ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन माय क्लासमेट्स जो लड़के थे. उनको कितनी बार, मोस्ट ऑफ देम डिडंट क्वाइट गिव अ डैम अबाउट उनके कितने नंबर आ रहे हैं. राइट,
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो.
0: एक तो होता था वॉशिंग पाउडर निर्मा, ऐसे करके टेबल पे शुरू खड़ा हो जाता था अपनी शॉर्ट्स को एक साइड से ऊपर करके. You know, remember the girl who used to come in the ad and all that. So they were like comics, you know. और लड़कियां कितनी सीरियस होती थी मोस्टली पढ़ाई में. ऐसा तुमको लगता है?
2: हाँ जी, हाँ जी, मेरे को तो ये डिफ्रेंसिएशन का रिबेल जो है मुझे बहुत पहले आ चुका था कि ये इतना कॉन्फिडेंस कब आएगा हमारे अंदर कि हम स्ट्रेस फ्री होकर, ऐसे स्ट्रेस फ्री होकर घूमना.
0: हाँ.
2: मतलब इनके लाइफ में तो कोई चिंता ही नहीं है.
0: बिल्कुल.
2: हम रोज जाके मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, कुट रहे हैं कि मार्क्स लाने.
0: और फिर मतलब अभी हाल ही में जब रिजल्ट आया ये बोर्ड एग्जाम्स वगैरह का इंडिया में, राइट, तो दो अलग अलग रिएक्शंस नोट किए गए. एंड इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो दैट यू नो आई एम हैप्पी टू शेयर ऑन द सोशल मीडिया. तो क्या हुआ कि एक लड़की 90% मार्क्स लाई थी और वो रो रही थी. मतलब उसकी माँ उसको समझा रही है, इट्स ओके बेटा, सब ठीक है. और सामने से उसी के बैकग्राउंड में उसका एक क्लासमेट जिसके 60% आए थे लड़के के, वो मिठाइयों के डब्बे लेके घूम रहा था पूरे पूरे नेबरहुड में. सो एक जो रिसर्च हुआ उसने ये कहा कि भाई वेरी सिंपली पुट, मेन आर सिंपल, दे हैव सिंपल रिक्वायरमेंट्स इन लाइफ. ठीक है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते. मतलब लड़की सोच रही है मैं सक्सेस फेलियर के साथ कैसे डील करूँगी लाइफ में, मेरा क्या होगा, मेरे तो मतलब सिर्फ 90 आए हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. रोए जा रही है, रोए जा रही है. और वो आ रहा है, क्या हुआ इसको, क्या हुआ, क्यों रो रही है? वो खुश है, मिठाइयाँ लेकर घूम रहा है. टू क्यूट या. What do you think about this?
2: वही ना, अगले जन्म बेटा ही की जो टाइप वाली फीलिंग इसमें भी आती है.
0: Exactly. और कह रहे हैं कि 60% will be happy for life. मतलब क्योंकि उसको हर सिचुएशन में हंसना आता है. और जैसा कि हमारे अपने सोशल मीडिया पे इस हफ्ते हमने कहा था कि अगर आपको हंसना नहीं आता जिंदगी में तो हमको फोन करो 9151896 3, हम आप पे हंस देंगे. वी हैव नो इश्यूज विद दैट.
3: रेडियो मस्ती 24/7. डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन. रेडियो मसी 24/7 पर मार्क्स की बात हुई थी अभी और गर्ल्स और बॉयज के थोड़े दिमाग में अलग तरीके से प्लेजर्स को डील करने की बात हुई थी. मार्क्स की एक और बात करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अंतरा जी की खबर है और वो आज पूरी तैयारी से आई हैं.
2: मस्ती मैडनेस जहां

0: डॉक्टर साहब को देखकर इस बंदे को आया मतलब लग गया झटका और वो सोच रहा है कि अब मैं इससे इलाज करवाऊं कि नहीं करवाऊं. Why? Because he was the same guy. The doctor was the same guy who had bought leaked medical type के papers from him years ago.
1: तो उसको लग रहा है कि बेटा ये चीटिंग करके पास हुआ था, ये सच का डॉक्टर है.
0: मतलब और उसको समझ में नहीं आ रहा है, कहते मैं क्या करूं, डियर मस्ती, व्हाट शुड आई डू.
1: सारा का सारा शो मस्ती मैडनेस का अब डियर मस्ती में कन्वर्ट होता चला जा रहा है. एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ जो नो फिल्टर वाली न्यूज है ना, इन सबका इलाज हम डियर मस्ती में निकालेंगे. यहाँ पर वी कैन ओनली शेयर द न्यूज, बट द फन इज जब हम इनको बताएंगे कि तुम्हें कैसे करना चाहिए था डील, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है ना. ऑन रेडियो मस्ती गाइज, डियर मस्ती जरूर सुनिए, बिकॉज एवरी ट्यूजडे 5 to 8 PM सीरियसली इट इज अ हेल ऑफ एन अमेजिंग शो, जहां पर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के सिंपल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं. सॉल्यूशन तो क्या, एटलीस्ट देयर इज.
0: आप क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में?
1: ना जाती उसके पास, दैट्स फॉर श्योर. मुन्नी बदनाम हुई. कमिंग अप नेक्स्ट, इसीलिए.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: मेरे मोस्ट रीसेंट इंटरव्यू में जो हाल ही में अनूप जलोटा जी के साथ हुआ था, उसमें एक सवाल उठा था कि भाई जब तुम्हें पद्मश्री मिल रहा है तो पद्मश्री के बाद में आप अपनी मम्मी माताश्री को फोन करते हो और माताश्री कहती हैं बेटा अब तो तू ढंग से गाना शुरू कर दे. दिस इज द सिचुएशन दैट अनूप जलोटा जी शेयर्ड विद मी. और मुझे उस टाइम अपने डैडी याद आए थे जो 100 में से 100 नंबर आते थे तो कहते थे कैन डू बेटर.
1: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
0: इसीलिए हम कहते हैं मोटिवेशन ही खत्म हो गई उस टाइम.
2: That is so very true. I think that generation of parents, वो इसी तरह से उन्होंने devise कर रखा था एक formula कि बोलते रहो, ये मत बोलना कभी कि अब हाँ हाँ अभी ठीक है या enough हो गया है अभी. ऐसे बोलते रहो कि वो लगा रहा है बंदा.
0: Very true.
2: देखो सभी लगे हुए हैं,
0: लगे हुए हैं. लेकिन ये सिर्फ उस generation की नहीं है. This मस्ती madness radio मस्ती 24/7 पर अजीबो गरीब खबरें. एक mother of a student in West Bengal. भाई okay. अब क्योंकि रिजल्ट्स की बात हो रही है, नंबरों की बात हो रही है, तो आईसीएसई का जब रिजल्ट आया हाल ही में तो 499 आउट ऑफ 500 इस बच्चे के आए. ओके. एंड ऑफ कोर्स ही गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ नंबर 2. तो उसकी मम्मी जो कि एक स्कूल टीचर है, पूछा गया कि भाई हाँ जी आपको क्या लगता है 99.8% आए हैं, 499 आउट ऑफ 500 आए हैं, व्हाट डू यू हैव टू से? वाओ, शी सेज आई एम सैड. She said, I am sad. It would have been better if he had scored one more mark. ऐसे बोला उसकी माँ ने. अगर ये थोड़ा और पड़ा होता तो आज मैं दुखी नहीं होती उस एक नंबर के पीछे. मतलब ये माँ के सेंटिमेंट्स हैं. क्या कहना चाहोगी तुम? बेटे से पूछा, तुम्हारी माँ तो बहुत दुखी है. तो कहता है, आई फील बैड कि मैंने एक नंबर लूज किया, लेकिन ठीक है, मैंने ठीक ही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
2: देखो बड़ाओं का ये लड़का थोड़ा मतलब स्टेबल समझदार इंसान बनेगा, दैट बिकॉज ही इज नॉट लाइक गिविंग इट दैट मच तवज्जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर तो इसने कह दिया होता कि नहीं जो मेरी मम्मी कह रही है वही ठीक है, तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम थी.
0: कुछ लोग जो ऑब्वियसली ट्रोल कर रहे हैं उस न्यूज को, वो लिखते हैं कि दिस इज वन रीजन व्हाई योर सन इज नॉट टॉकिंग टू यू इन योर ओल्ड एज, प्लीज रिमेम्बर.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
3: Ho tohari lachke jab kamariya hasara.

0: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, यहाँ पर ऊंची है बिल्डिंग, क्या बात है, क्या गाना है, क्या धमाल है सुबह सुबह और मस्ती मैडनेस
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: हाँ जी हाँ जी, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको किस तरह से बोलूं, बट हम बिल्कुल समान की बात करेंगे, हम बंदों के समान की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है
0: बिल्कुल।
2: तो कुछ ऐसा था कि हमारा ये जो बंदा है, तो 2014 में इसको हुआ था भयंकर एक इन्फेक्शन ऐसी एक जगह नीचे वाले सामान पे, ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा कि यू नो, अब बिकॉज अगर तो तुमने इस सामान को अभी भी बॉडी से अटैच्ड रखा तो फिर ये पूरा इन्फेक्शन तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल, तो इसको अलग करना पड़ेगा। नाउ इट्स अ बिग डील, राइट, सामान अलग करना इट्स लाइक अ ह्यूज ह्यूज थिंग। तो ये बंदे ने कहा कि चलो अब मतलब इसमें तो जान की बात आ गई है, तो तुम कर तो दो, बट मैं नहीं चाहता कि ये बिल्कुल ही मेरे से अलग ही हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं तो इसको मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ जो है एडजस्ट करना ही करेगा। 6 साल, ओके, दिस बंदा हैड बीन ट्राइड डिफरेंट पार्ट्स अपने बॉडी के अलग अलग जगह पे उस सामान को अटैच कर करके देखने के लिए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा फीजिबल कंपैटिबल है। फाइनली इट वाज हिज आर्म,
0: अच्छा जहां पर
2: आर्म में वो अटैच कराया, जहां पे वो पनप रहा है
0: अपना प्राइवेट पार्ट,
2: तो वो अपना सामान अपने आर्म अटैच करके आज की जिंदगी वो जी रहे हैं। या
0: नहीं अंतरा, दिस हैज टू बी फेक न्यूज, ये हो ही नहीं सकता। मतलब मेडिकल चैलेंज कर रहे हैं यार, जहां पर हमारा जो सामान लगा है शरीर में वो वही ठीक है, नहीं तो वो कटता है तो कहीं और कौन फिट करता है, ये थोड़े कि नाक नीचे लगा देते हैं, तुम सोचो।
2: आई हैव नो आइडिया, मतलब अब ये जो बंदा है उसके जो फोटो डाली हुई है वो भी AI जनरेटेड हो सकती है, बिकॉज आजकल बहुत मुश्किल है बताना
0: एब्सोल्युटली
2: कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन।
0: हाँ, लेकिन इस पूरी की पूरी अटैचमेंट पे वी कैन हैव अ सेपरेट शो ऑब्वियसली, बिकॉज उसको कवर कैसे करना है, उसको दिखाना कैसे है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसके बारे में कैसे ध्यान रखना है, इन सबको देखते हुए आई एम जस्ट थिंकिंग अगर उसको किसी से प्यार हो गया तो उसका इस्तेमाल कैसे, मैं अभी तो गाना ही चला देती हूँ।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अब आप ये सोचिए कि आज के जमाने में दहेज नाम का जो शब्द होता है उसको तो सभी हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन इन व्हाट अदर क्रिएटिव वेज आर दहेज टाइप ऑफ बिजनेस स्टिल कैरीड आउट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, दिस इज मस्ती मैडनेस।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती।
4: भाई गॉड की कसम, मतलब क्या ही आपने कौन सा वर्ड यहाँ पे बोल दिया। आजकल इतने मतलब दो तीन हाल ही में केसेस चल रहे हैं, सेम विद द डाउरी इन इंडिया। ओह माय गॉड, इट हैज बीन देयर ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड।
2: बिल्कुल
4: जी,
2: पिछला अभी इसी हफ्ते में जो 12th ऑफ मई पे जो वो त्विशा शर्मा की बात हो रही थी, काफी ज्यादा चैनल्स ने और रिपब्लिक हैज डन एन अमेजिंग जॉब। मतलब मैं तो अर्नब गोस्वामी की बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, तो उस तरह से ऑफ कोर्स दहेज इज ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस दैट स्टिल देयर आर ब्राइडल डेथ्स इन इंडिया। लेकिन मैं इस बात को मस्ती मैडनेस के ढंग में कन्वर्ट करना चाहूंगी। तो हाल ही में एक दूल्हे जी ने बोला कि भाई उनको चाहिए ब्लैक महिंद्रा स्कॉर्पियो गिफ्ट में शादी पर। सो अब वो दहेज नहीं होता, अब वो गिफ्ट होता है जो आप हमसे मांग सकते हो, क्योंकि आपकी खुशी के लिए और आपकी बेटी की खुशी के लिए एक वो गिफ्ट बड़ा जरूरी है। तो एक छोटी सी ब्लैक महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब बजट कॉन्स्ट्रेंट्स थे तो ब्राइड की जो फैमिली है उन्होंने सरप्राइज किया उसको एक टॉय वर्जन देके शादी के टाइम पर। सभी कैमरास और सभी जो रस्में हो रही थी उसके बीच में एक टॉय आया स्कॉर्पियो का और उनके हाथ में थमाया गया। अब क्या है कि ऑब्वियसली गेस्ट हंस रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये पूरा का पूरा सटल मैसेज जा रहा है कि हम मतलब हम जितना अफोर्ड कर पाए अपनी तरफ से हम बेस्ट कर रहे हैं। सो या इट्स अ ग्रेट टेक, लेकिन ये सोच कि फिर भी शादी उसी आदमी से हो रही है तो बाद में वो क्या हाल करेगा उस लड़की का, ये भी हमें समझ में आती है।
4: मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है इस सिचुएशन में कि यू एक्चुअली डेड, तुम टॉय कार लाए क्योंकि तुमको उसको जवाब देना था, ठीक है, उसके बाद भी तुमने अपनी बेटी उधर ब्याह दी।
2: exactly.
4: मतलब I really did not get the math.
2: Exactly. और तुम पूरे सोशल मीडिया पर ये चीज दिखा रहे हो कि इसने ये मांगा था, हमने ये दिया इसको, एंड तुम सोच रहे हो कि शादी के बाद वो चुप रहेगा। मतलब दिस इज लाइक प्रोवोकिंग, रादर देन दैट व्हेन यू नो द औकात ऑफ अ पर्सन जस्ट स्टॉप, डू नॉट

0: दूसरे घंटे में एंटर करते हुए चार चार चीजों की बात करेंगे.
1: एंटर कर रहे हैं हम. ओह लेट्स एंटर द थर्ड टाइम थर्ड आवर.
2: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन. जी हाँ बिल्कुल फ्राइडे है. फ्राइडे की फीलिंग दे रहे हैं आपको. शाम का क्या प्लान है?
0: देखिए जब सुबह आती हूँ तो मैं तैयार होती हूँ. बाय द एंड ऑफ द शो थर्ड आर में घुसने लगते हैं तो फिर रेणुका एकदम तैयार हो जाती है. मतलब हम कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं. We will always tie loss.
1: There she goes. Okay.
0: Yes.
1: खबर.
0: हाँ जी तो कुछ ऐसा है कि चार चार बीविया एक ही दिन में. ओनली फ्यू मेन आर दैट लेवल ऑफ लकी. तो भाई ये बंदे का जो ये सपना पूरा हुआ, इसने शादी की चार चार बंदियों से एक ही दिन में. अब बंदा फुल एक्साइटेड कि आज तो और मजे आएंगे. लाइक इट इज लाइक रॉक एंड रोलर टाइप एकदम फीलिंग करके टड बन के फर्स्ट वाली बीवी के पास गया. फर्स्ट वाली बीवी के साथ जब वो गया कुछ करने के लिए तो उसकी डिस्कवरी से उसको लगा पहला झटका.
1: ओह
0: तो उसकी फर्स्ट बीवी निकली ट्रांसजेंडर.
1: ओह ओके ओके.
0: तो उसने कहा कोई बात नहीं हमारे पास तो तीन और.
1: हाँ क्या बात है. मतलब हम तो फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं. हमारे पास तो तीन तीन लाइनें हैं.
0: हाँ. तो हम दूसरे के पास गए. कमाल की बात ये हो गई कि दूसरी वाली भी वही निकली. तीसरी और चौथी वाली भी नहीं निकली. मतलब एक ही बार में एक ही रात में बेचारे को बैक टू बैक कई सारे सदमे जो है. बिल्कुल इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद सर हमारे कुछ ना कर पाए.
1: ओहो मतलब सब्ज बाग दिख रहे थे और फिर उफ हर जगह रेत ही रेत. और कर अब चार शादियों को कर. अब डिवोर्स देने में और एलिमनी देने में बाकी की जिंदगी निकल जाएगी. भाई तुम्हारा सामान तो बिल्कुल अनयूज्ड रह जाएगा इतना हम बता सकते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंड देन वील कम बैक एंड से कि हस्बैंड्स का एक्सचेंज ऑफर कैसी रही है. न्यूज सुनते साथ साथ

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हम जितनी कोशिश करें ये बोलने की कि भाई अब मस्ती मैडनेस अपने अंत पे पहुंच रहा है, कुछ ही और शोज होंगे फिर हम खत्म कर देंगे।

0: है कि मस्ती मैडनेस का एक AVR स्पेशल होना चाहिए हमेशा, महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। क्यों अंतरा जी, प्रोग्रामिंग हेड जी,
1: क्यों क्यों लोग देखना चाहते हैं कि मैं कैसे यहाँ पर, क्योंकि आजकल मुझे यहाँ पे हंसा कम करो, मैं उसमें मतलब गिर पड़ रही होगी, आप विजुअली मेरे को देख रहे होगे कि म्यूट होके कोई इंसान कैसे नीचे रोलर रोलर अप्पा कर रहा होता है।
0: नहीं, हमारे शो का अभी लाइव शो का नहीं, लेकिन अलग से एक होना चाहिए AVR मेरे ख्याल से, जहाँ पर हम 2-3 चुनी हुई जो खबरें हैं अजीब अजीब सी, वो हमें सबके साथ में शेयर करनी चाहिए, उनके व्यूज लेने चाहिए, सिर्फ हमारा व्यू क्यों हो। अब जैसे कि एक्सचेंज ऑफर की मैंने अभी भी बात करी, अब दो बहनें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ग्वालियर ब्रांच में गई और उन्होंने कहा वो लीगली अपने हस्बैंड्स को एक्सचेंज करना चाहती हैं क्योंकि वो दोनों खुश नहीं थी अपनी शादियों में। ठीक है, अब अजीब सी बात ये हुई कि एक औरत के हस्बैंड ने ये पिटीशन फाइल करी कि उसकी जो साली है, जो सिस्टर इन लॉ है, उसने उसकी बीवी को एबडक्ट कर लिया है। लेकिन जब उसकी बीवी कोर्ट में आई तो उसने कहा कि मैं तो अपने जीजा जी के साथ में रह रही थी बाय चॉइस। सो देन दोनों औरतों ने अपनी अपनी पिटीशन दी कि हम दोनों बहुत दुखी हैं अपने अपने पतियों के साथ में, लेकिन हम दूसरे के पति के साथ खुश हैं। तो क्या हम स्पाउस स्वॉप कर सकते हैं लीगली? अब कोर्ट थोड़ा परेशान हो गया कि ये जो वाइफ स्वॉपिंग और ये सब के केसेस होते हैं, ये तो काफी मतलब बाहर छुप छुप के होते हैं ना, कोई कोर्ट में आने की हिम्मत नहीं करता ये बोलने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, हम स्वॉप कर सकते हैं, आप लीगली हेल्प करोगे क्या?
1: इट इज लाइक गोइंग टू द प्रिंसिपल, मे आई टॉक इन द क्लास,
0: जज ने जाके लोकल पुलिस को बोला इन औरतों को सिक्योरिटी दो 6 महीने के लिए, काफी सेंसिटिव फैमिली डायनामिक्स हैं इनके।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: वेलकम बैक मस्ती मैडनेस, जो कि आप सुबह सुबह से एंजॉय कर रहे हैं रीड गौर अंतरा के साथ। आइए और आगे और अतरंगी बातों की तरफ लेके चले
1: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है
2: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों की एक ही वन स्टॉप शॉप, जहां पर दुनिया भर की अजीब अजीब सी खबरें। माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज हैव वी टॉक्ड सिंस मॉर्निंग। एक तरफ से दूसरी तरफ, उफ कमाल। हमारी लाइफ कितनी बोरिंग है इनके सामने।
0: सीरियसली आप ये सोचो, ठीक है, अब आपको मैं भारतवर्ष में मेरठ लेकर चलती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपका बड़ा बैड फेस चलता है, तब आपको समझ में आता है कि आपकी जिंदगी में कौन कौन है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा केयर करता है, राइट। तो ये जो हमारा एक बंदा है, इसको थाने में पकड़ के ले जाया गया, ठीक है। अब जब उसका बैड फेस आया, थाने में चला गया, अब उसकी बेल कराने के लिए एक नहीं, अचानक से दो दो बीवियां बेल कराने के लिए थाने पहुंची।
1: ओह वाओ, ओके।
0: दोनों बीवियों को पता नहीं था, दोनों बीवियां अपनी अपनी पतिव्रता वाली फीलिंग लेकर पहुंची वहां पर।
1: हाउ स्वीट।
0: वहां पे जाके उन्होंने रियलाइज किया कि वो सेम ही आदमी को बेल कराने के लिए वहां पर पहुंची हुई है।
1: औरत का कोमल हृदय।
0: हाँ, the twist of the whole story was कि भाई इन दोनों बीवियों के बीच में हो गई हाथापाई, मतलब नोचा नोची, बाल पकड़, झगड़ा सॉलिड।
1: हाँ।
0: कि मेरा पति है, मेरा पति है, तू ये तू वो फलाना ढिमका। तो भाई पति की तो बेल हो गई एक्सेप्ट। हाँ। पति आ गया बाहर। हाँ। ये दोनों थाने के सामने राइट रकस क्रिएट करने के लिए दोनों की दोनों हो गई अंदर।
3: निकला ओ गड्डी लेके,
1: वाह, गदर 2 के साउंड ट्रैक से मैं निकला गड्डी लेके।
3: ओ गड्डी लेके
0: भाई, बहुत ही, मतलब इसको कहते हैं किस्मत लेकर आना।
1: सीरियसली,
0: मतलब जो बाल मतलब बाल के हिसाब का बचा है ना ये आदमी, मतलब
1: कोई नहीं,
0: या तो ये पिट जाता बाहर निकल के। तो बट भगवान जी का ट्विस्ट आप देखें कि दोनों अंदर ये बाहर।
1: बेटा एक बात पक्की है, मुर्गे की माँ कब तक खैर मनाएगी,
0: कब तक खैर
1: आएगा तो? आएगा कभी तो आएगा वो दिन जब ये दोनों बाहर आएंगी, और ये कहाँ जाएगा इसको सोचना है।
4: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।
4: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
5: आई लव यू रसना,
4: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: मॉर्निंग शो तो नहीं है, लेकिन आज हम मस्ती मैडनेस में ही आपको सोल लेके चलते हैं। जी हाँ, जहाँ पर एक मई की शुरुआत में हंड्रेड्स ऑफ लोकल सोलाइट्स वो आए हान रिवर पर, क्योंकि उनको सिटी की गवर्नमेंट ने बुलाया था कि भाई तुम बहुत ओवरवर्क्ड हो, आओ हम तुम्हें सोला दें।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज
2: तुम्हें सोला दे, लाइक लाइक लिटरली सोला दे।
0: यस, सोला दे मतलब हमेशा के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ बिकॉज तुम बहुत ओवरवर्क्ड हो, बहुत ज्यादा काम करते हो। तो भाई सोल की जो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है, उसने तीसरा एनुअल स्प्रिंग इवेंट अभी मई 2 को ही करा, एंड दिस वाज डब्ड अ पावर नैप कॉन्टेस्ट। मतलब दोपहर के 3 बजे से लेकर रिफ्रेश सेट ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट थी फॉर वुड बी पार्टिसिपेंट्स, कि आप वो पहनेंगे जो आप रात को पहन के अच्छे से सोते हैं, कम टायर्ड, कम विद अ फुल बेली, एंड उसके बाद मतलब आप सोचो कि वहां पर, क्योंकि ये लोग इतने थके हुए होते हैं, बोलते हैं कि तुम इतना काम करते हो, मतलब एग्जाम प्रिपरेशन चल रही थी हाल ही में, पार्ट टाइम जॉब चल रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि हम 3-4 घंटे नाइट के बस उसी में अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। तो फिर ये सारे वहां पर आए कि भाई नैपिंग स्किल्स दिखाने के लिए अपने, सो इट वाज क्वाइट नाइस टू सी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वो दिए हुए, सारे मैट्रेस कंबल ये वो, एंड या इट वाज अमेजिंग। सारे इतना घोड़े बेच के सो रहे हैं सारी फोटोज में, सीरियसली अंतरा,
2: आंसू आ गए मैं तो सुन के ये बात, मतलब ओहो, मतलब बहुत ही स्वीट था ये तो। इनफैक्ट सोल में ही होता है जोनिंग आउट कॉम्पिटिशन।
0: अच्छा,
2: वो हाउ वेल यू कैन जोन आउट।
0: ओके, वाओ, दैट इज आल्सो अमेजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली आज की दुनिया में इंसोम्निया बस यही तो एक बीमारी है। 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। But seriously speaking, peaceful sleep, I think when a person wakes up after a peaceful sleep, it is the best in the world, है ना?
2: मेरे को तो समझ में नहीं आता, जो लोग कहते हैं मैंने 10 मिनट की पावर नैप ली, उठ गई फ्रेश, मैंने कहा ये कैसे हुआ, ये what kind of sorcery is this?
0: ये मुझे भी नहीं समझ आते, ये अलग प्राणी है, ये अर्थ के नहीं है, ये मार्स के है, मार्सलिंग्स।

0: राइट, और जाने से पहले वेल आई डू वांट टू से कि हाल ही में भारत में ये बात हुई कि भाई गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि आपके सारे की सारी जो मुद्रा है, जो विदेशी मुद्रा है, वो बाहर जा रही है, योर फॉरेन करेंसी. लेकिन फिलहाल के लिए सिंगापुर में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, और ऊपर से जोया लुकास की ये अमेजिंग सी जो सेल है, वाओ, दिस प्रमोशन इज अमेजिंग.
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: इतने I love, sometimes I love the creative humor which keeps rotating around Instagram की शर्म औरत का गहना है. मोदी जी ने कहा गहने मत करी, इसलिए हम आज से शर्म करना छोड़ देंगे.
0: आई थिंक दैट इज वंडरफुल. बिल्कुल सही चीज है भाई. भाई अब क्या कर सकते हैं, मोदी जी की बात कौन नहीं मानेगा, है कि नहीं?
2: बिल्कुल. बट आई थिंक आई अग्री, ऑल्सो अग्री विद यू, क्योंकि जब जॉलकास इस तरह के ऑफर निकाले तो भाई सिंगापुर में हमें बैकआउट तो करना ही नहीं है. ये सारे मौके ले लेने वाले होते हैं भाई. 40% फ्लैट ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस, क्या चल रहा है ये?
0: अमेजिंग. मतलब एंड दिस इज फ्लैट 40%. गोल्ड, डायमंड, पोल की, प्रेशियस ज्वेलरी, आप कुछ भी पहनो जी. 14 जून तक ही है ये पूरा का पूरा जो प्रमोशन है, तो आपको ये करना है कि जोया लुकास जाना है और जाकर अपनी ज्वेलरी अब खरीदो यार. वैसे भी दिवाली के पास महंगी हो जाएगी, गोल्ड सारा का सारा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि दिस इज द राइट टाइम, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. वाओ,
2: मैं तो सोच रही हूँ, मेरे तो दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है कि ना ये तो बहुत ही सही आइडिया है. दिवाली के टाइम पे तो महंगी हो जाएगी, अभी खरीद लेते हैं.
0: ठीक है ठीक है, तुम खरीदो, तुम इसी वीकेंड पे जाना, मैं आज ही जाऊंगी. एंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आज शाम का मेरा शो है 5 बजे, जिसको कहते हैं मस्ती टॉप चार्ट्स, और उसमें एक है या दो ये जानने के लिए आप बिल्कुल 5 बजे ट्यून इन करें टू रेडियो मस्ती 24/7. स्टे ट्यून. हमें भी नहीं पता इस टाइम, क्योंकि हम, मेरी तरफ से कोशिश जारी रहेगी कि ये रुक जाए, 5 बजे तक काम करे, लेकिन इसकी तरफ से जारी रहेगी कि ये जोया लुकास जाए. सो लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस.
2: मैं सडनली प्लान चेंज कर लिया, मैं भी आज ही जाऊंगी.
0: हैव एन ऑसम वीकेंड गाइस, एंड वी विल सी यू वेरी सून. आई विल डेफिनेटली सी यू एट 5 PM. सो ओके अंतरा, बाय.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

Schau, wie du wütend, dann

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends, only on Radio Musti 24/7 Live.

0: कुंतला कांटा की बड़ी बहन, मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी।
1: शादी कर, शादी कर, शादी कर, आपको ये शादी कर
2: और कुछ काम नहीं है क्या?
0: गई दिवाली आ गई होली, गई दिवाली

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh, man.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली है।
3: जोश में रहो।
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: रात अकेली है
4: तो क्या हम तो

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

जैसे ठहर गया है यहीं। हर तरफ एक

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: This is something

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: क्या
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या

0: भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: संजना, संजना,
2: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार

को कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा।

जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं।

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, Surf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.